0: हमारा अंदेशा है कि आज हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। ये देशवासी भी उस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री। ये बात सब समझ रहे थे कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद तेल, पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है बढ़ेंगे, और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, और बार बार पेट्रोल डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे।
1: खाड़ी में युद्ध चल रहा है, जहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है वहां पर युद्ध चल रहा है, जहाज आ नहीं पाता है इसके कारण। लेकिन ये टेम्पररी और अस्थाई मतलब स्थिति है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे ही खाड़ी युद्ध थोड़ा रुकेगा या बंद होगा तो स्थिति में सुधार हो जाए।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: हमारा अंदेशा है कि आज हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। ये देशवासी भी उस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री। ये बात सब समझ रहे थे कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद तेल, पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है बढ़ेंगे, और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, और बार बार पेट्रोल डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे।
1: खाड़ी में युद्ध चल रहा है, जहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है वहां पर युद्ध चल रहा है, जहाज आ नहीं पाता है इसके कारण। लेकिन ये टेम्पररी और अस्थाई मतलब स्थिति है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे ही खाड़ी युद्ध थोड़ा रुकेगा या बंद होगा तो स्थिति में सुधार हो जाएगा।

0: That note, we have more breaking news coming in. Let's quickly take a look. On that note, we are shifting our focus to the Bhojshala verdict that was in fact given yesterday itself by the Madhya Pradesh High Court, wherein Chief Minister Mohan Yadav comes out with his first reaction on the Bhojshala case. It's Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav who welcomes the very verdict and vows to bring back the Saraswati idol home. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav says, and I quote, High Court order honours our heritage. Right to worship has been ensured with this very verdict. The idol return order is commendable. The state is to facilitate the very idol return and we will work to bring the idol from the United Kingdom. We respect the court's verdict. This is what's been said by the Chief Minister of Madhya Pradesh at this point. We'll also take you through an exclusive conversation by our colleague Anjana Om Kashyap with the Chief Minister Mohan Yadav itself on this very matter. Take a look.
1: मुख्यमंत्री जी, आपने धार्मिक स्थल की बात की तो इसी पर एक जुड़ा हुआ सवाल है. राज्य के खास घटनाक्रम पर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि जो भोजशाला को लेकर फैसला आया है उस पर मैं बात करना चाह रही हूं. आज इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है. कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी. ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं. आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
2: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहां तो राहिर्म और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक और उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा. हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना. मुझे भोजशाला में भी अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की. नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी, लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया. मध्यप्रदेश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं. न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले ले जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए. तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए. मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया.
0: So let's take you through that historic verdict. It's a big and controversial verdict from the Madhya Pradesh High Court itself that was in fact delivered yesterday. After the Madhya Pradesh High Court bench declared the Bhojshala a temple, the ruling is being hailed as a major win by the Hindu side. Within hours of the verdict, the Hindu side has moved the Supreme Court, filing a caveat to ensure that they are heard before any order is passed if the ruling is challenged. But even as one side celebrates, the Muslim side has come out swinging. AIMIM Chief Asaduddin Owaisi calling the judgment erroneous, alleging key laws and historical records were ignored and even claiming that the centre sided with the petitioners. AIM PLB cleric Khalid Rashid Farangi Ma'ali also expressed deep disappointment, saying Muslims have offered namaz at the site for centuries, but making it clear that the fight is far from over with the Supreme Court now being the next stop. Meanwhile, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has welcomed the order, calling it a moment that honors cultural heritage and asserting that the right to worship will now be ensured, as you just heard him. He has also backed the call to bring back the idol of

0: On that note, we are taking you to breaking news. This is with regards to the historic Bhojshala verdict, right? A day after that, this is the first inside images of Bhojshala, and it's an India Today exclusive that we're bringing to you. Madhya Pradesh High Court opens the locks of Bhojshala. Devotees can be seen gathering to offer prayer at the temple. It's a big win for Hindu sides. Tears of joy erupt. As you can see, devotees entering the temple after the locks have been opened and offering their prayers. This is a big moment, and of course a big moment of victory, as was claimed by the Hindu side after the verdict came in. Legally speaking, we still see this will be taken up in the Supreme Court next, after the Madhya Pradesh High Court gave the verdict in favor of the Hindu side. However, the Hindu side has already filed a caveat to the Supreme Court for the same. But yes, at the same time, this comes in as big news. These are visuals, the first, and it's exclusive visuals that we're showing you, our first inside images of Bhojshala at this given point of time. Ravish Pal bringing us ground reports from this very temple site now, with more details on the same. Take a look as to what the devotees have to say and how the atmosphere has changed near this very temple site now after the very verdict.
1: आज तक भोजशाला के भीतर पहुंच गया है और फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे, जिसको माना गया था हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था, और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है, जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहां घिसा गया है, और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे। दिनेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर इस पर बात करने के लिए, उनसे हम जानते हैं। दिनेश जी, आप लंबे समय से गौशाला परिसर पर लोगों को लेकर के आते हैं, तो ये आकृतियां जो हैं ये ठीक से तो दिख नहीं रही है, तो एसआई ने कैसे अपनी रिपोर्ट में इन्हें माना कि ये गणेश जी ही है, ये रिद्धि सिद्धि ही है?
2: जिस प्रकार से बताएं तो किसी इसको जो मस्जिद कहा जा रहा था, तो किसी भी मस्जिद में कोई भी इस प्रकार की मूर्तियों की जो आकृतियां नहीं होती है। और ये पुरातन काल से जो भोजशाला है, राजा भोज के द्वारा जो बनाई गई पाठशाला थी, तो ये भी एक मंदिर था उनके उस काल के दौरान, ये भी एक मंदिर था। अक्सर मंदिरों की चौखट रहती है, वहां गणेश जी ऊपर होते हैं, किसी भी मंदिर में घुसते हैं तो भगवान के सामने नीचे झुक के जाना होता है, इसलिए वो दरवाजा छोटा होता है। तो इसीलिए ये वो माना गया है ये मूर्तियां है, और किसी भी मंदिर के गेट पर,
1: यहाँ पे गेट पे वो ओम नमः शिवाय लिखा है, वो बिल्कुल शिलालेख है। चलिए दिनेश जी के साथ चलते हैं, यहाँ पर भी दिए हैं, और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमाय जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है, और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और ये वो 104 खंभे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो 104 खंभे हैं जिसका जिक्र भी हाईकोर्ट ने किया है, और इसमें हाईकोर्ट ने ये भी माना है कि ये खंभों पे जो आकृतियां बनी हुई हैं ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो सभी सनातन धर्म से जुड़ी हुई आकृतियां हैं जो फिलहाल आपको यहाँ दिख जाएंगी। जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां, ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंभे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी, आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं, इस खंभे के ये भी जो है ये घंटियां हैं
3: जिसे यहाँ पे उकेरा गया है बाकायदा उस जमाने में जब यहाँ पे इन खंभों को बनाया गया था उसी दौरान। लेकिन जितने भी यहाँ पे ये खंभे हैं उनमें जो ये घंटियां थी उन सबको हटा दिया गया। हम दूसरे खंभे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको भी यहाँ पर एएसआई की टीम जब यहाँ सर्वे करने आई थी तो इसे कवर किया गया था क्योंकि यहाँ पर भी इस प्रतिमा को पूरी तरीके से घिस दिया गया था। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं दिनेश जी ये कौन सी प्रतिमा है, एक बार बताएं आप जरा, जिसको यहाँ पे कवर किया।
4: ये भी सब सरस्वती से संबंधित, सरस्वती देवी से संबंधित ही जितने भी हर खंभे पर मूर्तियां थी, काल सर्प योग है, नाटक मंचन है, ऐसे हर खंभों पर अंकित किया गया था। जिनको काल सर्प दोष हो रहा था उन काल सर्प योग अगले खंभे पर जाएंगे तो वहाँ काल सर्प योग यंत्र लिखा हुआ है। ऐसे ही हर खंभे पर जो है सरस्वती से संबंधित जितनी भी मूर्तियां थी हिंदू देवी देवताओं की, वो मूर्तियां थी जिन्हें तोड़ दिया गया, अलग ही दिख रहा है कि इनको खंडित किया गया है।
3: और यहाँ पे अगर आप देखें ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। जो आप इस वक्त देख रहे हैं आज तक पर एक्सक्लूसिव, फैसले के अगले ही दिन आज तक वो चाला के भीतर पहुंचा है और ये दिखाने की कोशिश की है कि आखिर कौन से वो चिन्ह थे, कौन से ऐसे शिलालेख थे जिसको एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया और उस पर विश्वास जताते हुए हाईकोर्ट ने इसे एक मंदिर करार दिया है। रवीश पाल सिंह, धार।
0: So let's take you through that very big and controversial verdict that was given by the Madhya Pradesh High Court yesterday itself. It was the Madhya Pradesh High Court bench that declared Bhotshala to be a temple, and the ruling is now being hailed as a major win by the Hindu side. Within hours of the verdict, the Hindu side in fact moved to Supreme Court, filing a caveat to ensure that they are heard before any order is passed if the ruling is challenged. But even as one side celebrates, the Muslim side has come out swinging. AIMIM chief Asaduddin Oaisi calling the judgment erroneous, alleging key laws and historical records were ignored, and even claiming that the centre sided with the petitioners. AIMPLB cleric Khalid Rashid Farangi Mahali also expressed deep disappointment, saying Muslims have offered namaz at the site for centuries, but making it clear that the fight is far from over, with the Supreme Court now being the next stop. Meanwhile, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has welcomed the order, calling it a moment that honours cultural heritage in asserting that the right to worship will now be ensured. He's also backed the very call to bring back the idol of Ma Vagdevi from the United Kingdom, saying the state will make all efforts to facilitate its return.
5: जो इस देश के नियम और कानून है उसके आधार पर काम होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के तीन प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का, ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, उससे मिला हुआ है। इस प्रकार का फैसला भी जो आया है ये तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इस पर किस प्रकार से ये किया जाएगा इस पर अध्ययन किया जाने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री,
6: मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है, और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। आज देख लो आज क्या हो रहा है। जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी, अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं। कोई पीआईएल डालता है 226 में और कोर्ट कैनॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका।
7: बहुशाला केस में जो हाईकोर्ट का फैसला आया है इससे यकीनी तौर पर मुसलमानों को काफी मायूसी हुई है, क्योंकि आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मुसलमान वहाँ मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। बहरहाल ये हाई कोर्ट का फैसला है, अभी मुसलमानों के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो इस केस को पूरे जिम्मेदारी और पूरी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट किया जाएगा और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में हम लोग को इंसाफ हासिल होगा।
8: यह न्यायालयीन लड़ाई 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के हरिशंकर जी जैन, विष्णु जी जैन, रजना अग्निहोत्री जी और विनय जोशी जी के साथ चालू हुई थी, जिसके अंदर बाद में एएसआई ने वहाँ का बोधशाला का सर्वेक्षण करा, रिपोर्ट पेश हुई और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये सुनवाई का क्रम जारी रहा। और आज इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, हमारी पूरी आस्था भारत के संविधान में और न्यायपालिका में है और साथ ही जो है जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज की आशा और अपेक्षा के अनुरूप दिया है।
0: Now India Today's Gaurav Sawant spoke to Hindu South petitioner Vishnu Jain about the very verdict. Listen in.
9: Critics of your petition in court say that the petition itself was a violation of the Places of Worship Act 1991. The religious character of the place as it existed on 15th of August 1947 should remain so. Does that bring into question this verdict by the Indore bench of the High Court?
10: See, Places of Worship Act 1991 is not attracted in this case by operation of Section 4, Subclause 3, Subclause A, wherein it has been held that Places of Worship Act will not apply to those places which are monuments which ASI. Are protected under the ASI. So this monument in question, Bhoshala Complex, was protected by the ASI under the 1904 Act, which is Ancient Monuments and Preservation Act 1904, as well as by virtue of Ancient Monuments and Preservation Act 1958. So both these acts are come within the exception of Section 4.3a. I request you to please show your viewers Section 4.3a. And this monument in question comes within the purview of ASI. And yes. Therefore, the Places of Worship Act is not attracted. It is not Vishnu Shankar Jain who is saying it is mentioned in the act itself.
0: And on that note, we're now shifting our focus to another story. This is with regards to the international arena and Prime Minister Modi's five-nation tour that he has embarked upon. After concluding the visit to UAE, now Prime Minister Modi is in Netherlands. That is his second destination in this five-nation tour. Modi received an enthusiastic welcome by the members of the Indian diaspora at the hotel that he is staying in while his visit to Hague in Netherlands. Prime Minister Narendra Modi, in fact, witnessed a cultural performance at the hotel, and the Dutch artists performed captivating and deeply devotional songs like Sadhu Rama Anupam Bani and Rag Durga for the Prime Minister. Now, he's in Netherlands for the second leg of his five-nation tour, as we just mentioned, and this is after holding high-level engagements with the UAE President, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, in Abu Dhabi. This is Prime Minister Modi's second visit to the Netherlands after 2017, and this trip comes at a significant moment early in the tenure of the new Dutch government. During the two-day visit from May 15th to 17th, Prime Minister is scheduled to call on King Willem Alexander and hold delegation-level talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten. The visit is expected to deepen India-Netherlands cooperation across several strategic sectors. Semiconductors are likely to dominate the discussions, with India looking to leverage the Dutch expertise to strengthen its chip manufacturing ambitions. Now, green hydrogen and clean energy transition will also remain key focus areas in this bilateral. Now, the two sides are also expected to discuss water management, defense ties, advanced technology, partnership, supply chains, greater collaboration in innovation and research, and climate-related challenges in their talks.
7: The visit of Prime Minister Modi to the Netherlands is very significant for many reasons. This visit is also happening very early in the tenure of the new government of the Netherlands, and therefore it will provide an opportunity for the two leaders to sit together, to establish rapport with each other and review the progress made. This is an opportunity to reaffirm the political commitment to bilateral relationship with the Netherlands at the highest level, and also
11: then to chart out the new priority areas for cooperation between the two countries.
12: It's a perfect time for both countries, Netherlands and India, to welcome Mr. Modi to ensure that we have a strategic partner between these two countries in the field of green energy and sustainable energy. Right now, when the world is facing this energy crisis, there are initiatives to be taken by both countries in the field of research and development, the pilot projects, the green corridor, and sustainable energy infrastructure. We really hope for a positive outcome for after this visit.
13: Last time, 2017, when he came, we met him. From the balcony, we were giving hand. And so now again, he's coming. So we are very happy, thrilled, being Indian Prime Minister coming to Holland. We are all lucky to have him here.
14: उनको देखना, उनके इतने करीब आना, ये बहुत अभूतपूर्व अनुभव था. बहुत समय से वेट कर रहे थे इस दिन का, और आए यहाँ पर कुछ घंटे खड़े हुए उनके इंतजार में, लेकिन बहुत अच्छा लगा देखकर उनको इतने नजदीक से. और जैसे बताया भरत जी ने कि उन्होंने देश का नाम इतना बढ़ाया, गर्व होता है आज भी हम यहाँ पर इस देश में रहते हैं कुछ वर्षों से, लेकिन अपने आप को भारतवासी होने का बहुत गर्व महसूस करते हैं. मोदी जी उसमें बहुत बड़ा योगदान है.
15: हम उनके सामने परफॉर्म किया, हमने गरबा परफॉर्म किया, फिर परफॉर्म होने के बाद उनके हम पास गए, हाथ मिलाया, फिर उन्होंने मुझसे पूछा तुम कहाँ से हो, हमने जय माता दी भी कहा, जय हिंद भी कहा, तो काफी खुश थे. और ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, हमने बहुत मेहनत की पिछले 3-4 हफ्तों से, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लाइफ टाइम की, हम इसके लिए रेडी थे. और आज हम बहुत खुश हैं, हम उनके सामने थे, हमने उनका हाथ मिलाया, उनको हमने अपने सामने से देखा, हम अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते.
16: हमने नरेंद्र मोदी जी के सामने परफॉर्म किया और उनको बहुत बहुत अच्छा लगा. हमने उनको सामने देख के हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि नेदरलैंड में हम लोग नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं. सो हम लोग बहुत ही अद्भुत हमारा एक्सपीरियंस रहा वो चीज का. एंड हम लोग बहुत शुक्रिया है एम्बेसी को और सब लोगों को जिन्होंने हमें परफॉर्म करने के लिए यहाँ बुलाया.
0: On that note, we have breaking news that's coming in. This is a police outpost that's been vandalized in Asansol in West Bengal after loudspeaker directive, lathi charge used to restore order in the very region. So what we're learning about tensions that prevailed in Jangir Mohalla area under Asansol Durgapur Police Commissionerate late on Friday night after a police outpost was allegedly attacked and vandalized following a dispute over the enforcement of the state government's new loudspeaker regulations at religious places. According to the police sources, newly formed West Bengal government led by Suvendu Adhikari recently issued strict guidelines regulating the use of loudspeakers at all religious institutions, including mosques and temples. The directive reportedly states that sound from loudspeakers must remain confined within the premises of the religious establishment and should not extend beyond the designated area. Following the order, police personnel from Jahangir Mohalla Police Outpost under Asansol North Police Station visited several religious places in the locality. It appealed to the authorities to comply with the new rules regarding microphones and sound systems. And it is then, following that very incident, that we could see that the police station was vandalized completely and attacked by the people from this very region. Tapush and Gupta joining me on the broadcast with more details. Tapush, what more details are we hearing from Asansol North in terms of this episode that panned out last night itself, and are tensions still prevailing in the area this morning?
17: Well, the situation remains to be normal at this moment, Shreya, but heavy forces have been deployed to maintain law and order in that area. What we gather from the police that it was a premeditated act by some miscreants, and this particular Jahangirpara area of Asansol is very infamous for stone pelting and vandalism. It is not perhaps for the first time. In multiple occasions in past, it had happened so, and police had to raid those places. What we have been given to understand that some people have been already identified. Yesterday in the late evening, when police went from went to different places interacting with people and trying to make them understand it's not about Hindu or Muslim, but people at large, that any religious procession or program should not be done on road. Miking should not be very loud when wide religious programs are going on. So it was a casual approach from the part of police to make a confidence building measure. And immediately when they went to that area, I was speaking to people, some people gathered there and they started spreading rumors that they were trying to get inside mosque and immediately things spiraled out of control. When police tried to contain the situation, heavy forces were deployed. There were stone pelting done, as alleged by the police. And as of now, police have identified few miscreants, some history cheaters, and the raids have been ongoing overnight. And as we speak, the raids are still going on. But as of now, to maintain peace and tranquility in the area, heavy forces deployment have been done. The central forces have been marching and patrolling in and around the area to oversee the law and order situation there. Back to you.
0: Right, Tapush, stay with us. There's more news that's coming in from West Bengal, another story that we were tracking very closely since yesterday. This is a big crackdown by the West Bengal Chief Minister, Shuvendu Adhikari, as he has suspended three IPS officers over the alleged lapses in the RG Corp case. Now, the move follows continued questions over the probe and the victims' parents' demand for accountability. Chief Minister Shuvendu has alleged that the officers were involved in procedural lapses, which included allegedly attempting to offer a bribe to the victim's family. Meanwhile, RG Corp victim's parents have hailed the Chief Minister's decision, saying that former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is the real culprit and alleged that the truth behind the RG Corp case would emerge if she was caught and jailed. So this is yet another update coming into that very case as we speak. And Tapush will be bringing us more details on the other side of these reactions that we bring to you.
18: ওই সময় যে ইনসিডেন্ট ঘটেছিল তাকে মিসহ্যান্ডলিং করা প্রপারলি এফআইআর ইনভেস্টিগেশন ইনিশিয়ালি যে পার্টটা পুলিশের করা উচিত ছিল এজ এ ডিসিপ্লিন অর্গানাইজেশন আমরা শুধুমাত্র আমাদের সরকারের যে লোকরা ছিল স্পেশালি দা সিনিয়র পুলিশ অফিসার্স দিদেন কলকাতা পুলিশের যারা ছিলেন সিপি এবং ইনক্লুডিং অল এবং সবচেয়ে বড় অভিযোগ যেটা ইনিশিয়ালি আমাদের কাছে থ্রু মিডিয়া অনেকবারই এসেছে ভিকটিমের মাদারের পক্ষ থেকে যে দুজন পুলিশ অফিসার অন বিহাফ অফ দি স্টেট গভর্নমেন্ট টাকা দিতে চেয়েছিলেন
19: আরো অনেক অপরাধী রয়েছে প্রধান মাথা হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি তাকে যদি ধরে একদম জেলে পড়া যায় সব অপরাধীরা দাম বেরিয়ে আসবে খুশি খুশি আমার কিছুই আসবে না কোনোদিনও বিচার হবে বিচার হলে হয়তো সমাজ থেকে অপরাধীরা ভয় পাবে ভয়মুক্ত একটা সমাজ তৈরি হবে
20: আইপিএস অফিসার নে পহলে দিন সে ইয়ে খাস কে দৌরাপ করনে কা কোশিশ কিয়া থা ইসকা নির্দেশ আমারা ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কা হি থা উসকা প্রমাণিত আজ হো গিয়া ইয়ে পদক্ষেপ উন্হোনে পহলে লে সকতে থে লেকিন নাহি লিয়া আমারা যে নয়া মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ দিয়া ইসলিয়ে উসকো ধন্যবাদ
0: Tapush, coming back to you, if you could just take us a little more into the details of the lapses that have been flagged by this government now with regards to the particular case and the procedure that was followed in investigating the very case, especially by the police officers who have been suspended. And now that this case is again coming to the forefront, especially when we speak of this new state government.
17: Well, see, yes, there were a lot of complaints against Kolkata police during RG Corp movement, especially the parents of the victim had made multiple complaints. Even they had alleged that police attempted to bribe them at that point in time. But it seemed at that point in time that all their pleas and allegations went unheard. And then we know that how things panned out and the parents took it up legally against the government and the administration. And finally, after assuming office, Shubhendu Adhikari have now categorically decided and announced that three IPS officers, including the former police commissioner Vineet Goyal and two other IPS officers, remain to be suspended, and a departmental inquiry have already been ordered. It's very clear that this decision have been taken based on some facts, and fact-finding was done by none other than the Home Secretary and the Chief Secretary. And keeping that in mind, obviously there are lapses as far as the rule book of police is concerned, as far as the conduct of police is concerned. So keeping that in mind, it's a strong action that we are witnessing that state have taken right now. It's not about only three officers, but it's a message to police and people and in the administration at large that if any lapses from now on happens, then there will be punitive action. Now, it remains to be seen that what transpired out at the end of the investigation or the so-called the inquiry that have already been ordered against these three police officials. Back to you.
0: Right, Tapash, thank you for bringing us those details on that very case, and we'll keep coming back to you for more updates through the day. On that note, viewers, there's more breaking news that's coming in. Let's quickly take a look. Now, this is shifting to the state of Tamil Nadu, wherein Karthi Chidambaram warns Chief Minister Vijay and says, and I quote, "No need to include the AIADMK. Without the AIADMK itself, the government will run smoothly for 5 years. If you include the AIADMK, it will minus people voted for a change, barring the AIADMK and the DMK, and form a government." So this is his message to Chief Minister Vijay. Remember, Congress was one of the first parties to come in and join hands with the TVK, offering allegiance so that the alliance could be formed. They have the numbers, the majority, to cross the very majority mark and form the government at the very centre in this state. Now, this is what Karthi Chidambaram has said. Listen.
2: ஏடிஎம்கே சேர்த்துக்கவே வேண்டாம், நான் தெளிவா சொல்றேன், இன்னைக்கும் சொல்றேன், ஏடிஎம்கே சேர்த்துக்கவே வேண்டாம். ஏடிஎம்கே இல்லாமல் 5 ஆண்டுகள் ஸ்மூதா கவர்மெண்ட் நடத்த முடியும். ஏடிஎம்கே சேர்த்துக்கிட்டா அது ஒரு மைனஸ் ஆகும். மக்கள் வந்து வாக்களித்தது வந்து அதிமுகவும் வேண்டாம், திமுகவும் வேண்டாம், அது ஒரு மாற்றமா தான் ஒரு அரசாங்கத்தான அமைக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனால அவர் வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, ஐயுஎம்எல், விசிகே, காங்கிரஸ் சேர்த்துக்கிட்டா மக்கள் ஏத்துக்கிறாங்க. அதிமுக ஒரு பிரிவை வந்து அரசாங்கத்தில் சேர்த்துக்கிட்டா என்னை பொறுத்தவரை அதை மக்கள் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். அவருடைய இமேஜுக்கும் இந்த அரசாங்கத்துக்கு அது மைனஸாக தான் நான் பார்க்குறேன். நாங்கள் வந்து அரசாங்கத்தில் பங்கேற்க போகிறோம் சொல்லியிருக்கோம், அடுத்த தேர்தலில் கூட்டணி வைக்க போகிறோம் சொல்லியிருக்கிறோம்.
0: And with that, we're wrapping up the bulletin right here this hour. But do stay tuned to India Today as we come back with more news in the next hour. Thank you for watching.
21: You are watching India Today.
22: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
23: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
24: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
25: It's college football time. College basketball feels
24: Pardon
25: like
24: my take.
26: The Rams catching the Commanders.
24: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
27: Of success.

0: हमारा अंदेशा है कि आज हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। ये देशवासी भी उस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री। ये बात सब समझ रहे थे कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद तेल, पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है बढ़ेंगे, और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे और बार बार पेट्रोल डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे।
1: खाड़ी में युद्ध चल रहा है, जहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है वहां पर युद्ध चल रहा है, जहाज आ नहीं पाता है इसके कारण। लेकिन ये टेम्पररी और अस्थाई मतलब स्थिति है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे ही खाड़ी युद्ध थोड़ा रुकेगा या बंद होगा तो स्थिति में सुधार हो जाएगा।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: We're beginning the bulletin with our focus on that big controversial verdict from Madhya Pradesh. And this is with regards to the Bhojshala. After MP High Court bench declared Bhojshala to be a temple, the ruling is now being hailed as a major win by the Hindu side. Within just hours of the verdict, the Hindu side also moved the Supreme Court, filing a caveat to ensure they are heard before any order is passed if the ruling is challenged. But even as one side celebrates, the other one, the Muslim side here, has come out swinging. AIMIM chief Asaduddin Owaisi calling the judgment erroneous, alleging key laws and historical records were ignored, and even claiming that the centre sided with the petitioners. AIMPLB cleric Khalid Rashid Farangi Mahali also expressed deep disappointment, saying Muslims have offered namaz at the site for centuries, but making it clear that the fight is far from over, with the Supreme Court being their next stop. Meanwhile, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has welcomed the order, calling it a moment that honours cultural heritage and asserted that the right to worship will now be ensured. He has also backed the very call to bring back the idol of Ma Vagdevi from the United Kingdom, saying that the state will make all efforts to facilitate its very return.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बीजेपी की राज्य सरकारों ने बचत के कई उपाय शुरू किए हैं. प्रधानमंत्री ने 7 बचत मंत्र दिए हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर. आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश कैसे वैश्विक संकट की परिस्थितियों का मुकाबला करने को इस वक्त तैयार है. मुख्यमंत्री जी, आपका आज तक पर बहुत बहुत स्वागत है.
2: आपका भी अभिनंदन है. आपका भी नमस्कार.
1: मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की बचत करने की अपील के बाद आपने दिल्ली में, हमने देखा, मेट्रो पर यात्रा की है. मध्य प्रदेश में, अपने राज्य में बतौर मुख्यमंत्री आपने क्या कदम उठाए हैं?
2: देखिए, हमने तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद, मुझे इस बात का संतोष है कि सबसे पहले हमारी सरकार ने तुरंत इस बात पर ध्यान दिया और मेरे अपना स्वयं का कारकेट कम किया. हमने अपने कई सारे मंत्रियों को वर्चुअल रूप से कैबिनेट में आने के लिए भी पात्रता दी. अच्छा। साथ ही साथ हमने कोशिश की कि ये वैश्विक संकट में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो खासकर अभी का संदेश, वो बहुत कई अर्थों में बड़ा गहरा भी है और उपयोगी भी है. ऐसे हम अपने सभी प्रकार के कामों से माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं का सम्मान करते हुए देश के सामने, मतलब देश उस स्थिति में कोशिश कर रहे हैं जिसकी अपेक्षा की गई है.
1: मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये देखिए, वैश्विक संकट का दौर तो चल रहा है और प्रधानमंत्री ने जब कहा कि भाई बचत करनी है और उन्होंने 7 मंत्र दिए कि भाई हमें अपना पेट्रोल डीजल कम करना है तो आप कार पूलिंग पे जाइए या वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन लगना चाहिए, दिल्ली में फैसला भी हुआ है. फिर उन्होंने विदेश दौरे पर कहा, सोना पर कहा, फर्टिलाइजर पर कहा, कई सारी चीजें कही हैं. अब जनता पूछ रही है कि 3 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, 3 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दी, तो ये तो सारी मार हम पर डाल दिया है.
2: देखिए, ये कहना गलत है कि 3 रुपए की डीजल पेट्रोल की मार पड़ करके और ये हम पे डाल दिया. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस और जो देश की तरफ उन्हें ध्यान आकर्षित कराया कि हमको प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए, और मैं देश को बताना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के समय से और हम आज भी पूरे देश में प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा रकबा कहीं है तो मध्य प्रदेश के साथ है. हमने अपने राज्य के अंदर भी वो सब प्रबंधन करने का प्रयास किया जिसके आधार पर पेट्रोल डीजल की बचत होती है. हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी, ईवी व्हीकल को बढ़ाने के लिए भी पिछले समय भी मध्यप्रदेश के विधानसभा के समय से भी प्रयास किया और हम कुल मिलाकर के जो वास्तव में हमारी वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भरता बढ़े, हम अपने देश के संसाधनों के भरोसे चले, हम इस पर ठोस भी काम कर रहे हैं और अनावश्यक वाहनों की लंबी कतारें या हमारे काफिले को बड़ा करना या ये जो लोग दिखा अलावा इसको कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के आह्वान के साथ ही साथ जो दूसरी उन्होंने बात कही है, जैसे सोने की खरीद का और यूरिया और अन्य प्रकार के रासायनिक केमिकल खाद का, जिसपे हमको अपनी जो मुद्रा को विदेश में निर्भर रहना पड़ता है, वो सारे हम प्रबंधन कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारे अपने देश की मूल आर्थिक ताकत मजबूत हो और हमारी वैश्विक निर्भरता आत्मनिर्भरता के बजाय अपनी तरफ से ताकत बढ़ाए।
1: अच्छा, इस बात पर मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने अपने एक जितना मुझे याद आ रहा है आपकी पार्टी से ही जुड़े हुए एक नेता थे, जब हम लोगों ने गाड़ी दिखाई उनके उनका काफिला दिखाया सौभाग्य सिंह ठाकुर का, तो आपने उनको नोटिस दिया है। तो मतलब ये डाउन द लाइन मैसेजिंग कैसे होगी? मतलब यहाँ तो जिला अध्यक्ष भी 10-10, 20-20 गाड़ियां लेके घूम रहा है।
2: नहीं, ये जो आपने कहा, हमने तुरंत इस दिशा में जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान आया, हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए और हमारे वर्चुअल रूप से भी और बाकी निगल मंडल अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष, हमने सबने मिलकर के तय किया है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के साथ इस वैश्विक हालात में भारत के मूल भावना के साथ चलते हुए सादगी रखेंगे, और अगर इसमें कोई अनुशासनहीनता करता तो उस पर हम कठोर कार्रवाई भी करेंगे।
1: अब आते हैं जरा विपक्ष पर, क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये कहना है कि ये सरकार की तरफ से उपदेश नहीं, ये आपकी नाकामी के सबूत है। तो अब इस पर क्या है, क्या आप मानते हैं कि ये वाकई नाकामी है जिसकी वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई है?
2: देखिए, मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बारे में तो बड़ा मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो जब भी बोलते देश के खिलाफ ही बोलते हैं। आप बताइए, विदेश में छुट्टी मनाने कोई सबसे ज्यादा जाता है तो कौन जाते हैं, और उनके खर्चे पे भी प्रश्न उठे, मैं अभी विस्तार से उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर से लगा करके अब जो भी हमारी सेना ने कभी गौरव और गर्व देने का मौका मिला, हमारे देश की सीमाओं पे अतिक्रमण होकर के आतंकवादियों ने हमला किया, तब भी राहुल गांधी जी का वही दृष्टिकोण था जो धारा 370 को लेकर के बहनों के जीवन में जो एक गलत निर्णय, खासकर 3 तलाक वाले मसले पे भी हमने सबने देखा था। जम्मू कश्मीर के मामले में भी हमने देखा कि जब आज कश्मीर कितना अच्छा हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी, सच में मैं तो मान के चलता हूं कि उनको अपना राहुल गांधी जी का नाम बदल करके ये विरोध गांधी ही रख लेना चाहिए, क्योंकि उनको हर बात में केवल विरोध करना चाहिए, वो तार्किक भी नहीं रहते। आप बताइए, चुनाव यहां चलते हैं और वो विदेश यात्रा पर चले जाते हैं और फिर कहते हैं हम हार गए चुनाव में। अभी काउंटिंग के दिन भी जो अपने देश के अंदर नहीं रहेंगे और आने के बाद वो जिस ढंग की भाषा बोलते हैं, मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष जैसा बहुत पवित्र पद है, अटल बिहारी वाजपेयी जी इसमें लंबे समय तक देश के सामने, नहीं दुनिया के सामने, हमारे लोकतंत्र के लिए गरिमा और गौरव वाले पद पे एक अपोजिशन के लीडर का जो गरिमा और व्यक्तित्व होना चाहिए, राहुल गांधी जी ने निराश किया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि उनको पुनर्विचार करना चाहिए, आत्म अवलोकन करना चाहिए।
1: लेकिन ये सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है मुख्यमंत्री जी, यहां तक कि शरद पवार भी कह रहे हैं कि पीएम की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, विपक्ष के नेताओं के साथ सरकार को चर्चा करनी चाहिए, इसमें हर्ज क्या है?
2: जैसे आपने दोनों बात बहुत अच्छे से कही कि ये जैसे शरद पवार जी ने कहा, तो ये एक बात हो सकती है कि सर्वदलीय बैठक की बात आ जाए, लेकिन हमने देखा कि जब भी सर्वदलीय बैठक की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, अभी अभी देखो ना, अभी देश की आधी आबादी को लेकर उन्होंने कितने सबके सामने कहा कि आप मेरे से जो चाहो, आप चाहो तो विज्ञापन छपवा लेना, लेकिन हमारी आधी आबादी को आप ताकत दीजिए। लेकिन जिस ढंग से मजाक बनाया गया, क्या डीएमके, क्या कांग्रेस, क्या सपा, सबने मिलकर के जो मजाक बनाया, तो कई बार वो लोकतंत्र में इतने बड़े मन के लोग नहीं है जो एक साथ एक मंच पे बात करें, वो कदम कदम पे जो राजनीति करते हैं। ऐसे में वो शरद पवार जी बोल भले रहे कि सर्वदलीय बैठक करो, लेकिन सर्वदलीय बैठक करने के बाद वही घिसी पिटी बातें, तो कभी कभी इससे वो एक जो गरिमा और गौरव की बात होती है, गंभीरता की बात होती है। मुझे लगता है कि अगर गंभीरता से बात करें तो हमारी प्रधानमंत्री और शरद पवार जी की मित्रता भी अच्छी है और लोकतंत्र में इन विचारों के बलबूते पर कई बातें बन सकती है, लेकिन ये खुले मन से होना चाहिए, साफ दिल से होना चाहिए।
1: मुख्यमंत्री जी, विपक्ष की तरफ से एक और आलोचना हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये कॉन्वॉय में एक गाड़ी कर दिया, दो गाड़ी कर दिया, चार गाड़ी कर दिया, इससे थोड़ी ना जो डॉलर है वो बच जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ दिखावे के लिए आप लोग कर रहे हैं, और उनका सीधा ये आरोप है कि देश में असल भार आप लोग जनता पर डालने के लिए सिर्फ ये धीरे धीरे लोगों को कंडीशन कर रहे थे।
2: देखिए कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आजकल तो मैं आज तक का धन्यवाद देता हूं, आप डेली ईरान युद्ध के से जुड़े हुए घटनाक्रम को दिखाते हैं। आज वैश्विक हालात पे जितनी अच्छी डिबेट आपके यहां होती है, मैं आज शाम को भी देख रहा था, आप स्वयं उसमें भाग ले रही थी। जब ये दुनिया के सामने वैश्विक चुनौती है, जब अमेरिका से लेकर सारे देश जो अपने आप को बहुत सक्षम देश मानते हैं, वहां पे पेट्रोल और तमाम प्रकार की चीजें कीमत बढ़ाना पड़ रही है, ऐसे में अगर हमारी सरकार ने अभी भी न्यूनतम रूप से, मैं मान के चलता हूं प्रधानमंत्री जी ने पहले अपने आत्मनिर्भरता की दृष्टि से सरकार की साइड से उन्होंने सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग वो हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे भी माननीय प्रधानमंत्री की भावना का मजाक बनाया, ये बोले थाली बजाने से कोविड दूर हो जाएगा। आप बताइए हमारे देश को अनुशासन के साथ खड़ा करने में, और हमारी आजादी के पहले भी सत्याग्रह के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने देश को एकजुटता करते हुए साथ में लेने का प्रयास किया था। ऐसे प्रयासों से ही देश में एकजुटता आती कि जो जहां है जैसा है अपने तरफ से वो भी इस वैश्विक संकट में भारत के लिए अपना योगदान दे। इसलिए काफिले कम करना, सोना खरीदने से बचना, ऐसे कई सकारात्मक जो संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, ये देश की एकजुटता के लिए है और हम सबको संकल्प की तरफ मजबूती के साथ खड़ा करने के भाव है।
1: अच्छा मुख्यमंत्री जी, अब आते हैं असल मुद्दे पर। चलिए वर्क फ्रॉम होम, और कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा ही है वर्क फ्रॉम होम, घर से ही हम अपना वर्चुअल मीटिंग्स कर लें, काम कर लें तो अच्छा है, लेकिन विदेश नहीं जाना है, सोना नहीं खरीदना है, मतलब कम खरीदना है, ये अपील कैसे, क्योंकि एक जन अभियान में आपको इसको बदलना होगा, ये कैसे आप देश के लोगों को, आपको क्या लगता है क्या वो वाकई इस अपील को मानेंगे, कितना मानेंगे?
2: देखिए मैंने तो आज अपनी खुद की मीटिंग में भी ये बात कही कि हम अपने स्तर पे भी, हम सब लोग अधिकारी स्तर पे भी तय करें, सरकार के स्तर पे भी तय करें, जब तक कि बहुत आवश्यक किसी को विदेश जाना नहीं हो, किसी के कोई कोई मेडिकल से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, किसी के बच्चे बच्चे का एजुकेशन का कोई विषय हो, हमको हमारे स्वदेशी भाव के बलबूते पर हमारे देश के अंदर भी अपना समय आनंद के साथ अच्छे से, आपको विदेश के अंदर के बजाय अपने स्वदेशी पर्यटन को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मैं इसको एक तरह से इस स्वर्णिम अवसर के नाते मानता हूं कि आप केवल विदेश के, ये बात सही है कि जब हम विदेश जाते हैं तो हमारे अपने लिए कई प्रकार के इन सारी चीजों के खर्चे भी जुड़ते हैं और दूसरे तरह की बातें भी आती है। तो विदेश जाना और सोने खरीदने के बारे में आपने स्वयं ने, हमने सबने महसूस किया है कि आज के समय में सबसे ज्यादा अगर डॉलर पर निर्भरता तो ये खास करके 71 के बाद में गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड के जो स्टोरेज की जो वर्तमान की पॉलिसी है, जिसके बलबूते पर डॉलर के दाम के आधार पर भारत के रुपये पे इसका दबाव पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से बात सही है कि हमारे देश के अंदर तो सोने से जुड़े हुए कई घटनाक्रम में, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब देश की आजादी के समय में तुलादान के बलबूते पर स्वर्ण दान करने का आह्वान किया था, बात के क्रम में भी हमने सबने देखा है। तो ऐसे में सोना न खरीदने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, ये 100% सही है, मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए और हम सबको पालन भी करना चाहिए।
1: अच्छा ये बताइए कि केमिकल खादों का कम और जो जैविक, जो नेचुरल फार्मिंग है उस पर जोर, और शिवराज सिंह चौहान जी जो अभी कृषि मंत्री हैं, वो आपके पहले वहां पर मुख्यमंत्री थे, क्या देश के बचत मंत्र में कृषि क्षेत्र में खासतौर पर मध्य प्रदेश कोई अनूठा कदम उठा सकता है?
2: निश्चित रूप से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। आपकी बात जानकारी के लिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है। हमने अपने सभी प्रकार की प्राकृतिक खेती के लिए विशेष प्रकार के प्रयास प्रारंभ कर दिए। कृषि कल्याण वर्ष हम पूरा वर्ष मनाने वाले हैं और कृषि के माध्यम से किसानों की आय कैसे बढ़े और खासकर किसान के साथ, खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन या अन्य प्रकार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम ठोस काम कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा आग्रह हमारा ये खेती बागवानी के साथ हमारी प्राकृतिक खेती पे जाने का, और इस आज के जमाने में तो ऑर्गेनिक खेती के बलबूते पर आज की स्थिति में अगर मैं गेहूं की बात भी करता हूं अकेला, तो हमारा सरबती गेहूं का पूरे दुनिया में इस प्रकार से आकर्षण बढ़ा है, लोकवन का भी है, और खास करके हमारे सभी प्रकार की प्राकृतिक और प्राकृतिक खेती के उत्पाद का जो महत्व बढ़ा है, ये आज यह अवसर है जब हम इस पर बहुत तेजी से काम करें और इसका हमको लाभ भी उठाना है।
1: ठीक है, अब इससे पहले कि मैं अगले विषय पर जाऊं, एक बार जल्दी से एक बार कैविलकेट पर एक और सवाल था मेरा, क्योंकि आपने भी अपने कॉन्वॉय में कमी की है, कई लोग अब विपक्ष इसको भी उठा रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, पीएम के कैविलकेट के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक दिन तस्वीर आई कि पीएम की गाड़ी काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां थी, फिर 2 गाड़ियां थी, वो कह रहे हैं कि आप सिक्योरिटी अपैरेटस जो तय ऑपरेंडाई है कि कैसे भाई एसओपीज जो है पीएम सीएम्स की सिक्योरिटी को लेकर, उसको छेड़ना सही नहीं है।
2: ये देखिए, आप इस बात को समझिएगा कि ये बात सही है कि सिक्योरिटी का अपना एक महत्व है, लेकिन ये बात भी सही है कि हम अपनी भावना की अभिव्यक्ति तो कर ही सकते हैं। बाद में अभी होम मिनिस्ट्री और बाकी सुरक्षा बल इस सारी बातों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके जो गाइडलाइन देंगे, मैं मान के चलता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री इस मामले में आदर्श हैं, सबसे पहले वो दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते हैं। और ये बात भी सही कि हमारे अपने डेमोक्रेसी में जनता से जुड़ने का अगर कोई सरलता सहजता हो सकती है तो इससे बड़ा अच्छा अवसर कौन सा हो सकता है। हम क्यों लोग दिखावा करें, हम क्यों भारी आडंबर करें, क्यों हम बड़ा लवाजमा दिखाएं, हम तो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, तो जनता के बीच में रहने के लिए अगर ये अवसर आता है तो मुझे भी आनंद आया। कल मेट्रो में गया, काफी देर तक बात की, रास्ते में मध्यप्रदेश के बारे में भी एक बहन ने हमारी धार्मिक स्थल की बात की, प्राकृतिक स्थल की बात कही, पर्यटन स्थल की बात की, वन्य जीवों पर बात की, वो प्रसन्न हो रही थी कि आपके यहाँ चीता आ गया, ये आपके यहाँ चीता हमारे पूरे एशिया से खत्म हो गया था, मुझे अच्छा लगा। वो 56 दुकान की बात करी इंदौर में, वो इतने अच्छे मिष्ठान मिलते हैं पूरी रात में, आपके यहाँ ये वित्तीय अनुकूलता कैसे है, भोपाल के तालाब की बात कर रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है कि हमारी निकटता आती है, हमारे देश के बाकी भाई बहनों से मौका मिलेगा। मैं मान के चलता हूँ कि इसको इस अवसर के नाते से लेना चाहिए।
1: ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी आपने धार्मिक स्थल की बात की, तो इसी पर एक जुड़ा हुआ सवाल है, राज्य के खास घटनाक्रम पर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जो भोजशाला को लेकर फैसला आया है उस पर मैं बात करना चाह रही हूं। आज इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी। ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
2: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहाँ तो राहिर्म और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी, और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक, और उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा। हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना। मुझे भोजशाला में भी अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था, लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की, नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी। लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया। देश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं। न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है, और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले ले जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया।
3: यू आर वॉचिंग India Today.

0: Welcome back, viewers, and a very good afternoon to all of you. You're watching India Today with me, Sriya Kundu. And right at the top of this very bulletin, we're taking you through an exclusive conversation where in Haryana, Chief Minister Nayab Singh Saini exclusively spoke to India Today, and that is with Anjana Om Kashyap, and has said that Save Wise mission is what we should be focusing on at this point. He's gone ahead to say, and I quote, given Save Fuel directives at this very juncture, especially after the Prime Minister had come up with his 7 saving mantras last weekend itself, a lot of it had to do with the energy crisis. We'll take you to that exclusive conversation. Take a look as to what the Chief Minister had to say.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को युद्ध के संकट के बीच एक बचत मंत्र दिया है. उसमें 7 मंत्र हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक तो हमें बचत करनी है तेल की, इसी के साथ सोना एक साल तक ना खरीदे, विदेशी यात्रा से बचें, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं, और तमाम ऐसी चीजें जिससे हम देश को इस युद्ध संकट से उबार पाए. इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं. मुख्यमंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि जो खबरें हमने देखी है, आपने भी प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अपना जो काफिला है, कॉन्वॉय है, उसको आपने 4 गाड़ियों तक सीमित कर दिया है. लेकिन आज बड़ा प्रश्न ये है कि सिर्फ काफिले में गाड़ी कम करने से तो यह संकट कटने वाला है नहीं. क्या भारत करेगा जिससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तो जनता यह भी पूछ रही है सर कि तेल पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी आपने 3-3 रुपए. दोनों पर आपका जवाब सैनी साहब.
2: देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो राष्ट्र के नाम अपील किया है, ये किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये समस्त राष्ट्र का है. क्योंकि जब कोई इस प्रकार का वैश्विक संकट आता है तो समय समय के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश को एक आह्वान भी किया, एक दिशा भी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है. और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की समस्या, एक बड़ी समस्या ये सामने आई है, ये भारत के लिए नहीं आई, ये पूरी वैश्विक समस्या है. ऑल ओवर द वर्ल्ड जो समस्या आई, उसको सभी देश इससे जूझ रहे हैं. और उस कठिन समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, क्योंकि पिछले दिनों जब कोरोना संकट के अंदर पूरा विश्व इसकी चपेट में था, उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से समय समय के ऊपर अपील किया है, और उन्होंने उस बात को फॉलो भी किया है, उसके परिणाम भी सार्थक निकले हैं. अभी जो इस प्रकार का संकट ये हमारे सामने खड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट का, उसके बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है, ये एक राष्ट्र हित के अंदर उन्होंने अपील किया है. और इस अपील से ये केवल सरकारों के लिए नहीं, ये बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक जिम्मेदारी का संदेश देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है. और मैं आपको अंजना जी बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने भी उसी भावना के साथ कदम उठाए हैं. जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं. हमने सरकारी विभागों में ईंधन और बिजली बचत के निर्देश दिए हैं, और गैर जरूरी जो वाहन है उनका उपयोग ना करें उसके बारे में हमने कहा है. और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि ऊर्जा को बढ़ाने पर भी जोर हमने दिया है, और सार्वजनिक जो अंजना जी परिवहन को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ईवी के व्हीकल, किसी ने कोई जरूरी अगर कहीं जाना है तो वो ट्रेन से जाए या अन्य चीजों से जाए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वाहन था, कि इसके अंदर जब ये सामूहिक जो अपील आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, और इसको जब हम सभी पूरा राष्ट्र लागू करेगा, तो ऐसा नहीं है देश को एक बड़ा जो एक संकट आया है, ये वैश्विक संकट है, उस संकट से निकलने का रास्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी अपील के अंदर किया है, और हम सब ने उस अपील को मानना चाहिए, क्योंकि ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है. और मैं आपको अंजना जी बताना चाहता हूं कि जब जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, मैंने स्वयं ही अपने काफिले में भी उनको गाड़ियों को कम किया है. और क्योंकि शुरुआत अगर कहीं से कोई व्यक्ति करता है तो अपने से शुरुआत करता है, हमें अपने से शुरुआत करनी चाहिए. और हमारा लक्ष्य यही है कि कम संसाधनों में अधिक प्रोडक्टिविटी आए, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं और ये राष्ट्र हित में सर्वोपरि है, ये हमारा प्रयास है, हम उसको लेकर के अंजना जी काम कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, मैंने कहा है कि ये विशेष एक व्यक्ति या एक उसके लिए नहीं है, समस्त राष्ट्र के लिए हर व्यक्ति की इसके अंदर जिम्मेवारी है कि इसमें आगे बढ़कर के अपना योगदान देने का वो काम करे। इस वैश्विक संकट से हमने आगे गति से बढ़ना है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, विकसित भारत, उसमें इस प्रकार की समस्याएं संकट ये वैश्विक आते हैं, उनका हम मिलकर के सामना करेंगे।
1: ठीक है मुख्यमंत्री जी, मैं अगला सवाल आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा विषयांतर कर रही हूं। आज आपको बिल्कुल अलग रंग ढंग में हम लोग देख रहे हैं, इसकी कोई विशेष वजह?
2: विशेष वजह नहीं थी, क्योंकि आज मैं अपने सिरसा में चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, जिस पवित्र भूमि ते गुरु नानक देव जी समय समय पर और गुरुआ दे चरण कमल उत्थे पड़े ने, उत्थे ते एक विशेष ट्रेन हरी झंडी दिखा करके श्रद्धालुआ दी, मैंने सचखंड साहिब नदेड़ साहिब भेजण का वो काम किया है, बड़े श्रद्धालु उत्थे से गए सी, मैं अज चिल्ला साहिब गुरुद्वारा दे विच उत्थे सी सुनवाण का भी मुझे मौका मिला है।
1: मैं तो बस ये सोची थी किसी पड़ोसी मुख्यमंत्री से प्रभावित तो नहीं हो गए हैं, थोड़ा लुक आपका अलग लग रहा था। चलिए वापस विषय पर आते हैं।
2: परंतु इस सारा पंजाब से,
1: बिल्कुल
2: हाँ अंजना जी, सारा पंजाब सी,
1: बिल्कुल ठीक,
2: क्योंकि गुरुआं दे चरण कमल इथे भी पड़े सी सारा, क्योंकि 1 नवंबर 1966 ते हरियाणा अलग हुआ सी, परंतु असी अलग नहीं मानते, दो भरा सी पंजाब ते हरियाणा, देखिए परिवार दे विच अलग होंदे आ, परंतु साडा रिश्ता जेड़ा पंजाब ते हरियाणा दा है, वो नाखून ते उंगली दा है। मैं बार बार कई मंचा ते इस गल
1: दो, दोनों राज्य भाई की तरह है, पंजाब हरियाणा भाई की तरह बिल्कुल रिश्ता है दोनों का। ठीक है वापस टॉपिक पर आते हैं सर, वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली एक और पड़ोसी राज्य की बात हो रही है, पेट्रोल और डीजल की बात हो रही है, तो दिल्ली में 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम सरकारी कर्मचारियों के लिए और 1 दिन मेट्रो डे डिक्लेयर किया गया है। वो कह रहे हैं कि भाई सरकारी कर्मचारी जो है वो मेट्रो पे सवारी करें। हरियाणा में ऐसे और कोई ठोस कदम आपने उठाए हैं क्या? और सबसे बड़ा चैलेंज जानते हैं सैनी जी, जो मुझे लग रहा है वो ये है कि कोविड के वक्त लोगों में एक डर था कि भाई हम अगर घर से निकलेंगे तो हमको ये बीमारी ना हो जाए, और बड़े डरे हुए थे लोग, उसकी वजह से सब घर में रह गए। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे वक्त पर एक जन आंदोलन, एक जन अभियान आप इसको बना पाएंगे ताकि लोग इसको माने, और कैसे?
2: देखिए मैं कहना चाहूंगा कि बदलाव की सबसे बड़ी जो ताकत है अंजना जी, वो जन भागीदारी होता है, और जब जन भागीदारी किसी उसमें खड़ा होता है तो ये केवल जो आदेश होते हैं सरकारी, वो आदेश परिवर्तन नहीं ला सकते, परिवर्तन अगर आता है तो जन भागीदारी से आता है। हमने अपील किया, देश के सत्रहवें प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अपील किया है, और हम हरियाणा में इस जन जागरूकता और जन सहभागिता अभियान के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, और स्कूलों में चाहे कॉलेजों में, पंचायत उद्योग हो और या शहरी निकायों में, हमने इसको इसके साथ जोड़ा है। और हमने अधिकारियों को भी इसलिए कहा है कि आप कोई बहुत जरूरी हो तो आप तब लाइव जाकर के कोई फिजिकली मीटिंग करें, परंतु नहीं तो आप वर्चुअली भी मीटिंग करें, इसका एक बहुत बड़ा लाभ वो मिलता है, क्योंकि कोई मीटिंग होती है उसके लिए व्यक्ति जब दूर जाता है फिजिकली मीटिंग लेने के लिए, तो अगर वर्चुअली करेगा, हमारे पास संसाधन है, वर्चुअली मीटिंग करेगा तो उसके अंदर एक बड़ा लाभ इस अभियान के अंदर मिलेगा, और लोगों को भी इस अभियान के लिए समझाना जरूरी है कि बिजली पानी ईंधन की बचत केवल आर्थिक मुद्दा ये नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक हिस्सा है। हम सब इस बात को लेकर के लोगों को भी हमें समझाने की आवश्यकता है। और अंजना जी मैं ये कहना चाहूंगा कि आवश्यकता होगी, प्रशासनिक जो हमारी गाइडलाइन है उसको हमने जो SOP तैयार किया उसको हम लागू किया है, और नीचे भी हमने कहा है कि आप इसका पालन कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है वो आह्वान किसी एक विशेष व्यक्ति या वर्ग के लिए नहीं, वो सर्व मानव के लिए उन्होंने देश के राष्ट्र के हर व्यक्ति के लिए अपील किया है और सबका दायित्व है इसके अंदर सहयोग करना।
1: पर पेट्रोल डीजल की भार तो जनता पे पड़ेगी ना सर?
2: जी जी,
1: 3-3 रुपया ज्यादा तो अब जनता को अपनी जेब से देना है।
2: देखिए अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के सत्रहवें प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, 11.5 साल का कार्यकाल उनका हुआ है। अभी पिछले दिनों अगर आप लोग देखेंगे, जब कोविड आया, वैश्विक संकट था अंजना जी, उस वैश्विक संकट के अंदर किस प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर असर पड़ा है, उसके बावजूद भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, जब मोदी जी समय समय के ऊपर देश को एक दिशा देने का काम करते रहे, तो उसका प्रभाव हमने सहन किया है। और यही मेन संकट अब हमारे सामने खड़ा हुआ मिडिल ईस्ट का, क्योंकि वहां से रास्ते प्रभावित हो रहे हैं, रास्ते से हम जो आदान प्रदान करते हैं उसके अंदर दिक्कत खड़ी हुई है, उससे रुका है, और उससे कहीं ना कहीं इस वर्क के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और उसके कारण ये दिक्कतें हमारे सामने खड़ी हुई है। परंतु इस संकट से भी हम मिलकर के पार निकलेंगे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। ये आह्वान, ये अपील
1: प्रधानमंत्री बचत के लिए सुझाव दे रहे हैं, उस पर उनका कहना है ये उपदेश नहीं है, ये सरकार की नाकामी पर मुहर है, ये उनकी नाकामी का सबूत है। इस पर आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मुद्दे पर विपक्ष तो साथ है नहीं आपके?
2: नहीं देखिए अंजना जी, मैं विपक्ष की आपने बात किया है, राहुल गांधी की बात किया है, विपक्ष ने, क्योंकि जब वैश्विक कोई संकट आता है उस संकट के अंदर विपक्ष का दायित्व होता है कि सहयोग करें, सरकार का नहीं देश का सहयोग करें, ये विपक्ष का दायित्व है। परंतु अंजना जी दुर्भाग्यपूर्ण है किस प्रकार का विपक्ष इतना चिड़चिड़ा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए उसने चिड़चिड़ा, जिस प्रकार से मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर वैश्विक संकट आता है, अगर आप लोग देखेंगे कोरोना के समय के अंदर ना वैक्सीन ना कोई दवाई, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने लगातार देश को समय समय के ऊपर गाइडलाइन दिया है, उसको एक दिशा में लेकर के गए। विपक्ष की क्या भूमिका थी उस समय के अंदर जब पूरा विश्व इसकी चपेट में था? हमारा भारत का विपक्ष निराश था और वो उसके अंदर राजनीति ढूंढ रहा था। संकट के अंदर भी विपक्ष अपनी राजनीति को ढूंढने का अगर काम करता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब भी वही स्थिति है, विपक्ष देखिए मोदी जी के बारे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता वो बोलने वो अलग विषय है। अगर मोदी जी जो काम कर रहे हैं उन कामों की वो प्रशंसा करे या ना करे वो विषय अलग है। माले देश हित के अंदर मोदी
1: मुख्यमंत्री जी उनकी एक शिकायत है,
2: देश का सम्मान
1: सब जी। मुख्यमंत्री जी उनकी एक शिकायत है, शरद पवार जी कह रहे हैं कि पीएम की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक की जाए, वो कह रहे हैं कि हमको रीच आउट ही नहीं करता, जो सरकार है वो हमसे बात ही नहीं करती, ये उनकी शिकायत है।
2: देखिए अंजना जी, जहां सर्वदलीय बैठक का सवाल आया, आपने जो कहा है ये निर्णय देश के सत्रहवें प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के स्तर पर ये लिया जाता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई इस प्रकार का कभी भी, जब कोरोना का संकट आया देश के सत्रहवें प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, और उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये पुलवामा का घटनाक्रम हुआ, पुलवामा के घटनाक्रम के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक के अंदर उसकी चर्चा की है। क्योंकि जब ये केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विषय है और जब देश के ऊपर इस प्रकार का संकट आता है, उनको मालूम है कि सर्वदलीय बैठक के अंदर हमें बैठ करके चर्चा करनी है। परंतु पुलवामा का जो कांड हुआ उसके अंदर विपक्ष की क्या भूमिका थी आप जानते हैं, और सर्वदलीय बैठक हुई, कोरोना के अंदर सर्वदलीय बैठक हुई, उसके अंदर विपक्ष की क्या भूमिका थी? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं अंजना जी आज आपके माध्यम से कि इस प्रकार का निराशा का माहौल विपक्ष में नहीं होना चाहिए। जब कोई वैश्विक संकट आता है देश के साथ खड़ा हुआ दिखाई विपक्ष देना चाहिए, परंतु इतना चिड़चिड़ा होना और इतना उनके अंदर निराशा होनी ये दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु ये देश के सामने एक संकट है और उस संकट के अंदर जब हम मिलकर के उसका सामना करते हैं तो उससे पार हो जाते हैं। वैश्विक संकट है और विरोध करना, यहाँ के जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर विरोध करें। इब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं थोड़ी देर के लिए अंजना जी आपके बीच में, आप कहेंगे भी क्या बातें कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान दिया, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया, उसका विरोध किया, करें विरोध, हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गरीब व्यक्ति के लिए, उसके इलाज के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, उसके भी सम्मान को बढ़ाने के लिए गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अधिकार दिया, और विपक्ष विरोध किया, करे वो विरोध कोई बात नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत के तहत शौचालय बनाने की बात की, महिलाओं को एक सम्मान देने की बात की, विपक्ष ने विरोध किया, करे विरोध, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जब वैश्विक संकट कोई आता है, कोरोना का संकट आ गया, ये हमारा जो पुलवामा का घटनाक्रम था पाकिस्तान के साथ एक संकट खड़ा हो गया, और अब ये जो मिडिल ईस्ट का मामला चल रहा है, ये पूरा वैश्विक संकट है अंजना जी, इससे ऐसे संकटों के अंदर विपक्ष की भूमिका सार्थक होनी चाहिए, वो निराशाजनक नहीं होनी चाहिए। ऐसे समय के अंदर तो खड़ा हुआ एक मंच पर दिखाई दे, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार की अगर बात करते हैं। परंतु ये मैं कहना चाहता हूँ, आपने जो ये क्वेश्चन किया है, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और केंद्र सरकार का ये विषय है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब समय होता है उसके अंदर जरूर विपक्षी दलों से चर्चा करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे सुझाव भी लेते हैं कि आप अच्छे सुझाव हमें दीजिए, हम उनको शामिल करके आगे बढ़ सके।
1: ठीक है, अब हरियाणा पर जरा मैं आना चाहती हूँ, हरियाणा पर फोकस करना चाहती हूँ। हरियाणा में गुरुग्राम जैसे शहर, जो कि एक तरह से अगर आप देखिए तो वो ग्रोथ ड्राइवर्स है, अब ऐसे में बहुत सारी चीजें, मतलब अनंत है ये बहस की भाई ईवी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ईवी कितने इस वक्त हैं देश में जिसकी वजह से लोगों के लिए एक रास्ता निकले, ईवी प्रोडक्शन से लेकर बहुत सारी चीजें हैं। फिर आपसे सवाल ये है कि बहुत कुछ बोल देना आसान होता है, उसको कार्यान्वयन करना बहुत चैलेंज रहता है, और ये भी सच है कि बहुत सारे देशों ने बहुत पहले ही पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी, हमने काफी एक बफर टाइम जनता को दिया है, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसका होने वाला है उसको आप कैसे असेस कर रहे हैं एज चीफ मिनिस्टर फॉर हरियाणा, और ग्रोथ इंजन वाले जो आपके गुरुग्राम जैसे शहर हैं वो कैसे कोप अप करेंगे, इस पर आपका रोडमैप क्या है?
2: देखिए अंजना जी, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने एक शब्द कहा है कि विश्व के अंदर ये बहुत पहले रेट बढ़े हैं, अभी यहाँ अब बढ़ाए गए हैं, आपने एक शब्द कहा है, परंतु मैं अंजना जी आप ध्यान करना, जब विश्व के अंदर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े थे उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर टैक्सों की कमी की थी, सभी स्टेट ने भी की थी कमी, ताकि पब्लिक के ऊपर, आम जन के ऊपर इसका प्रभाव ना पड़े। परंतु जब ये मिडिल ईस्ट की समस्या लगातार चल रही है और लंबी चल रही है, उस समय के अंदर स्वाभाविक ही है, क्योंकि रेट जब पूरे विश्व के अंदर बढ़ रहे हैं तो हमारी भी यहाँ कोई मजबूरी इसके अंदर हुई है। उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल अपील भी किया है कि हम गाड़ी का अन्यथा उपयोग ना करें, हम बस के अंदर जाएं, ट्रेन में जाएं, हम कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्हीकल से जाएं जिससे कि हम इससे बच सके, तेल को बचा सके, पेट्रोल डीजल को बचा सके। ये मेन कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी का था। और अंजना जी आपने जो गुरुग्राम की बात किया है, आज दुनिया एक असाधारण वैश्विक आर्थिक परिस्थिति से गुजर रही है, हम सब जानते हैं, युद्ध में जो सप्लाई चेन है वो भी बाधाएं उसके अंदर आई हैं, ऊर्जा के संकट पर भी अंजना जी असर पड़ा है, लगभग ये पूरे देश के ऊपर पड़ रहा है इस प्रकार की स्थिति। भारत की अर्थव्यवस्था फिर भी दुनिया में आप देखते हैं सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में बनी हुई है, जहां विश्व के अंदर आप लोग देखेंगे उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी नहीं गड़बड़ाई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो दूरगामी सोच है उस सोच के आधार के ऊपर लगातार हम उसकी स्थिति को बनाए हुए हैं। हमें अल्पकालिक जो चुनौतियां हैं और दीर्घकालिक जो क्षमताएं हैं दोनों को साथ लेकर और उनको देख करके हमें आंकलन करना होगा, हरियाणा विशेष रूप से, चाहे हमारा गुरुग्राम है, चाहे फरीदाबाद है, चाहे हमारा ये पंचकुला है, हाँ, ये चाहे पंचकुला है, ये सारे ऐसे हमारे शहर हैं देश के जो ग्रेट इंजन के रूप में हमारी सरकार उद्योगों को स्थिर करने के लिए वातावरण बेहतर प्रदान कर रही है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक और निवेश सुविधा पर देने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं।
1: नायब सिंह सैनी साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा मुख्यमंत्री जी, कि देखिए एक मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर सरकार ही, केंद्र सरकार ही ले लीजिए, जब कई ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं या ऐसे बात जनता से कहनी पड़ती है जो कि शायद लोगों को प्रिय ना लगे, कौन चाहेगा कि उसकी व्यवस्थित जिंदगी चल रही है, वो अपना पेट्रोल से जहां से कार से जाना चाह रहा है वो जा रहा है, या सोना खरीद है, शादी है किसी की, कुछ है, या फिर अपना जो भी जिस तरह से वो खर्च करना चाहता है उस पर अगर उसको सुझाव दिया जा रहा है कि बंदिश लगाओ, आपको एज सीएम क्या इस बात का भय भी सताता है कि ऐसा ना हो कि जो कर्ण अप्रिय चीजें हैं उसका जनता की तरफ से बैकलैश झेलना पड़े?
2: नहीं, देखिए ये राष्ट्रहित का मुद्दा है, राष्ट्र की मजबूती का अंजना जी ये मुद्दा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि हम अन्यथा वेस्ट ना करें, छोटी बचत और लंबा, एक बात बोलते हैं ना भी, अगर हमने छोटी आज बचत की है तो हम लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके अंदर मेन आह्वान था कि हमने छोटी छोटी चीजों से बचत करनी है, अन्यथा हम खर्च ना करें। और क्योंकि एक साल तक जो इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, ये सभी न सभी कहीं ना कहीं, अगर हम आज सब कुछ आज खर्च कर देंगे तो कल हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाएगी, तो उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी आह्वान किया है कि हम अन्यथा विदेश की यात्राएं जो करते हैं उसको भी हमें कम करना चाहिए, उसे भी रोकना चाहिए, ताकि ये सारे विषय इसके अंदर हैं कि देश हमारे सामने, राष्ट्र मजबूत होगा, हम सब मजबूत होंगे, और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है, अपील किया है, इसको हम सब ने मानना चाहिए, मेरा ऐसा आग्रह है, और हम सब की जिम्मेवारी है राष्ट्र के प्रति। आप देख रहे हैं, मैं अंजना जी, मुझे ये गर्व होता है कहते हुए, मैं कई बार इस बात का जिक्र भी करता हूं कि इन 11-11.5 वर्षों में देश बदला है, देश का सम्मान भी दुनिया के अंदर एक अलग रूप में आया है। ये आदरणीय मोदी जी की जो सोच है, उनकी जो नीति है, जो उनकी नियत है काम करने की, ये उसका परिणाम है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत किया जाए, गरीबी से उस व्यक्ति को कैसे बाहर निकाला जाए, उसी का परिणाम है कि देश के अंदर से 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से इन्हीं 11-11.5 वर्षों में बाहर किया गया है। ये प्रधानमंत्री जी लगातार जो देश के बारे में, देश की मजबूती के बारे में चिंता करते रहते हैं। मेरा विपक्षी दलों से आग्रह है कि उस कि इस समय के अंदर, ऐसे समय के अंदर राजनीति ना खोजे आप। राजनीति हम किसी अन्य विषयों पे कर ले, मैंने कहा है बहुत सारे विषय हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना की, उसके ऊपर राजनीति करें, भाई भाई किसी को लाभ नहीं मिल रहा, आप कहे ना विपक्ष की जिम्मेवारी है कहना भी इसको लाभ नहीं मिल रहा, लाभ मिलना चाहिए, ये यही काम होते हैं। परंतु जब वैश्विक संकट कोई आता है उसके अंदर तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा।

0: हमारा अंदेशा है कि आज हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। ये देशवासी भी उस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री। ये बात सब समझ रहे थे कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद तेल, पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है बढ़ेंगे, और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे और बार बार पेट्रोल डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे।
1: खाड़ी में युद्ध चल रहा है, जहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है वहां पर युद्ध चल रहा है, जहाज आ नहीं पाता है इसके कारण। लेकिन ये टेम्पररी और अस्थाई मतलब स्थिति है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे ही खाड़ी युद्ध थोड़ा रुकेगा या बंद होगा तो स्थिति में सुधार हो जाएगा।

नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री जी, हम सभी आपको सुनने के लिए आतुर हैं। नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री जी, हम सभी आपको सुनने के लिए आतुर हैं।

भारत माता की, भारत माता की, इतना प्यार, इतना उत्साह, सच कहूं कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में हूं। ऐसे लग रहा है जैसे भारत में ही कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है। वैसे तो

एड्रेस भी बदल सकता है, टाइम जोन भी बदल सकता है, लेकिन मां भारती की संतानें कहीं भी रहें, ये गर्मजोशी, ये वाइब्रेंसी, लाइफ को सेलिब्रेट करने का जज्बा, ये हमारे हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं आप सभी का इस वार्म वेलकम के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जब मैं यहां प्रवेश कर रहा था तो पूरा महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज और मेरो प्यारो राजस्थान, और ए फॉर असम, साथियों, आप सभी से मुलाकात के बाद आज मुझे हिज मैजेस्टी द किंग और हर मैजेस्टी द क्वीन से मिलने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राव यतिन से भी विस्तार से कई विषयों पर चर्चा होगी। बीते वर्षों में जब भी मेरी नीदरलैंड से यहां के लीडर से बात हुई है, ये हमेशा भारतीय डायस्पोरा की बहुत प्रशंसा करते आए हैं। मतलब कि आप सबकी प्रशंसा करते हैं। आप नीदरलैंड्स के समाज और यहां की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहां की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं पहले भी नीदरलैंड आता रहा हूं, मेरे पुराने साथी महर्षि महेश योगी के सारे यहां बैठे हैं। और यहां रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मेरा खासा परिचय रहा है। यहां बैठे अनेक परिवारों की कहानी केवल माइग्रेशन की कहानी नहीं है, यह एक संस्कृति की, आस्था की, तमाम संघर्षों के बीच ये प्रगति की कहानी है। उस दौर में तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि दो महासागर पार करने के बाद भी भारतीयों की पहचान इतनी जीवंत रहेगी।

आपके पूर्वज बहुत कुछ पीछे छोड़कर आए थे, लेकिन कुछ चीजें हमेशा उनके साथ रही। अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने त्योहारों की स्मृतियां, भजन की धुने और अपने पूर्वजों के संस्कार। साथियों, मानवता का इतिहास साक्षी है कि समय के साथ अनेक संस्कृतियां मिट गई, लेकिन भारत का डाइवर्स कल्चर आज भी अपने लोगों के दिलों में धड़कता है। पीढ़ियां बदल गई, देश बदल गए, परिवेश बदल गए, लेकिन परिवार के संस्कार नहीं बदले, अपनापन नहीं बदला। आपने डच भाषा को अपनाया, लेकिन अपने पुरखों की भाषा को भी छोड़ा नहीं। हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस यहां बहुत पॉपुलर है। ऑन इन स्टेशंस के माध्यम से भारत का संगीत और संस्कृति भी डच फैमिलीज तक पहुंच रहे हैं। द गांधी सेंटर हो या फिर अलग अलग शहरों के स्कूल, आप अपनी संस्कृति को भावी पीढ़ियों तक पहुंचा रहे हैं और ये बहुत ही सराहनीय है। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, आज 16 मई है और ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। सोच रहे हैं ना? सोचिए, जरा और सोचिए। आज से 12 वर्ष पहले में

16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है। साथियों, बहुत छोटी आयु से ही मैं देशभक्ति के रंग में रंग गया। आप ही मेरा परिवार बन गया। स्वर्ग से समष्टि की ओर चल पड़ा, अहम से वयम का रास्ता चुन लिया। और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया, आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। और समर्पित भाव से आप सबके आशीर्वाद से कुछ न कुछ करता रहा। लेकिन जनता जनार्दन का इतना प्यार मिलेगा, ये तो कल्पना में भी नहीं था। जब पीछे मुड़कर देखता हूं, 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में है, 12 वर्ष प्रधानमंत्री का सेवा काल, 25 वर्षों तक करोड़ों करोड़ वोटर्स का लगातार समर्थन, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। देश का ये प्यार, ये आशीर्वाद मुझे अपने जीवन का पल पल देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, दुनिया का कोई भी देश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे बड़े सपने देखने ही होंगे। आज हमारा भारत भी बहुत बड़े सपने देख रहा है। आज देश कह रहा है, हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें बेस्ट चाहिए। क्या चाहिए?

और हमें सिर्फ बेस्ट ही नहीं, हमें फास्टेस्ट चाहिए। और इसलिए जब भारत में एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है तो एफर्ट्स भी लिमिटलेस हो रहे हैं। जैसे भारत के युवाओं का उदाहरण है, आज भारत का युवा आसमान छूना चाहता है, वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, वो एआई और सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत को आगे ले जाना चाहता है। इसलिए ही भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार हो रहा है। अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देश हैं। और साथियों, आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। बात वही है, एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है और हमारे एफर्ट्स की स्केल भी उतनी ही बड़ी है। रिकॉर्ड हाईवे कंस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें और दुनिया का इतना बड़ा रिन्यूएबल एक्सपांशन, बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, आज का भारत कहता है हम ये लक्ष्य पाकर के ही रहेंगे। और हम ये करके दिखा रहे हैं। साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल एआई समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी और ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था, ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया, दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक भारत ने चलाया। जिस स्केल पर भारत डिजिटलाइजेशन कर रहा है वो अभूतपूर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत चला रहा है। और हां,
चांद पर भी भारत वहां पहुंचा जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया था। और न्यूक्लियर एनर्जी में दुनिया के सबसे एडवांस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी आज सफलता के साथ भारत काम कर रहा है। साथियों, भारत की जो ये स्केल है, ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भी देख रहे हैं। आज भारत में जो सोलर पार्क बन रहे हैं वो विश्व के सबसे बड़े पार्क में से एक है। सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल्स हो, सबसे ऊंचे और लंबे ब्रिजेज हो, सबसे लंबे एक्सप्रेस वे हो, सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क हो, सबसे बड़े सिविल एविएशन नेटवर्क हो, सबसे बड़े इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क हो, इनमें से अनेक आज भारत में बन रहे हैं। बीते सालों में भारत ने धरती से चंद्रमा की दूरी जितनी है, सुन लीजिए, धरती से चंद्रमा की जितनी दूरी है उससे भी 11 गुना 11 टाइम अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। साथियों, ये जो स्पीड और स्केल है, इसके अलावा आज के भारत की एक और पहचान है। आज का भारत इनोवेशन पावर्ड है। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है। ये भारतीयों के इनोवेशन का बहुत बड़ा प्रमाण है। आज पैसा रखना है तो डिजिटल वॉलेट है, डॉक्यूमेंट रखने हैं तो डिजी लॉकर है, ट्रेवल करना है तो डिजी यात्रा है, हेल्थ केयर का लाभ लेना हो तो डिजिटल हेल्थ आईडी है। साथियों, आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन में आधे से ज्यादा केवल भारत में हो रहे हैं। और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है।
और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। दो हजार 25 में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है। पिछले वर्ष ही भारत में 125,000 से अधिक पेटेंट फाइल किए गए हैं। साथियों, भारत चिप मेकिंग में, सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी बड़े कदम उठा रहा है। अभी भारत में 12 सेमीकंडक्टर प्लांट्स पर काम चल रहा है। इनमें से 2 प्लांट्स में प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है, यानी अब चिप भी डिजाइन इंडिया, मेड इन इंडिया होगी। साथियों, भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनावों का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या जालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई और इसमें भी विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है और ये हर राज्य का ट्रेंड है। आज भारत में वोटर उत्साहित है, आप भी उत्साहित है। साथियों, हमें गर्व होता है, हर साल वोटिंग के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। साथियों, भारत में 90 करोड़ से अधिक वोटर रजिस्टर्ड हैं। दो हजार 24 के लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला, यानी यूरोपियन यूनियन की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा भारतीयों ने वोटिंग की।
भारत अपने हर सिटीजन की डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को वैल्यू करता है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, भारत जब सफल होता है तो पूरी मानवता को उसका फायदा होता है, लेकिन आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी हैं। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है, पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर वाटर सिक्योरिटी तक नीदरलैंड्स और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारा कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और नीदरलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी और इसका लाभ आप सभी को भी होगा। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा। और इस जर्नी में हमारा डायस्पोरा ट्रस्टेड ब्रिज बन सकता है। और मैं इसलिए कहता हूं कि डायस्पोरा इंडिया की एम्बिशन को भी समझता है और यूरोप के स्टैंडर्ड्स को भी जानता है। इससे यहां बसे भारतीयों को भी भारत के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के अधिक अवसर मिलेंगे। साथियों, नीदरलैंड ट्यूलिप की धरती है और यहां के खूबसूरत ट्यूलिप्स को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहां आते हैं। भारत में भी दुनिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में से एक हमारे जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। और जिस तरह नीदरलैंड को ट्यूलिप्स के लिए जाना जाता है, वैसे ही भारत लोटस यानी कमल के लिए जाना जाता है। साथियों, ट्यूलिप और कमल
दोनों फूल हमें बताते हैं कि जड़े चाहे पानी में हो या धरती पर, अगर सही पोषण मिले तो सुंदरता भी मिलती है और स्ट्रेंथ भी आ जाती है। यही भारत और नीदरलैंड के बीच पार्टनरशिप का भी आधार है। साथियों, हमारे बीच दोस्ती की एक और कड़ी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती, और वो है स्पोर्ट्स। हम दोनों देश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत कुछ मिलकर कर रहे हैं। अब जैसे क्रिकेट है, नीदरलैंड की क्रिकेट में भारतीय समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। अभी भारत में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नीदरलैंड की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन भारत की टीम को भी नीदरलैंड की टीम ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। जब हम तेजा निदाम नूरू और विक्रमजीत सिंह को नीदरलैंड की जर्सी में देखते हैं, या फिर जब आर्यन दत्त जैसे युवा खिलाड़ी डच क्रिकेट के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। साथियों, जैसे क्रिकेट में भारतीयों का योगदान है, वैसे ही भारत की हॉकी में नीदरलैंड्स का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत की हॉकी को और अधिक निखारने में डच कोचिज की भी मेहनत रही है। हमारी विमेन हॉकी टीम बीते कुछ समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। इसमें कोच मरीन का अहम रोल है, और इस वर्ष तो हॉकी वर्ल्ड कप का होस्ट नीदरलैंड भी है। और आप सभी को भारत के मैच देखने तो जाना ही जाना है, ये बात पक्की है कि वर्ल्ड कप जो भी कोई जीते, लेकिन इतना पक्का है कि इस ओलंपिक में भारत और नीदरलैंड की दोस्ती जरूर जीतेगी। साथियों, भारत और नीदरलैंड के बीच के रिश्ते की असली ताकत आप सभी है। आप इस पार्टनरशिप के जीवंत सेतु है, जीवंत ब्रिज है। इसलिए भारत सरकार ने सूरीनामी
हिंदुस्तानी समाज के लिए सूरीनामी हिंदुस्तानी समाज के लिए ओसीआई कार्ड की एलिजिबिलिटी चौथी पीढ़ी से बढ़ाकर छठी पीढ़ी तक कर दी है। साथियों, 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है। इसलिए ये समय भारत में आपके पुरखों के गांव से जुड़ने का भी है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। और ये मोदी की गारंटी है।

0: हमारा अंदेशा है कि आज हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। ये देशवासी भी उस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री। ये बात सब समझ रहे थे कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद तेल, पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है बढ़ेंगे, और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, और बार बार पेट्रोल डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे।
1: खाड़ी में युद्ध चल रहा है, जहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है वहां पर युद्ध चल रहा है, जहाज आ नहीं पाता है इसके कारण। लेकिन ये टेम्पररी और अस्थाई मतलब स्थिति है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे ही खाड़ी युद्ध थोड़ा रुकेगा या बंद होगा तो स्थिति में सुधार हो जाएगा।
2: विषय राजनीतिक है ही नहीं, मैंने कहा एक सामाजिक व्याधि है। इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा, सभी की दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सभी राजनीतिक पार्टियों की दायित्व है। एनपीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी।

0: And with that, ladies and gentlemen, we come to the end of what's been a fabulous evening. Remember that for all the stories, so all for our achievers of the year, you can catch their stories in the next edition of the India Today magazine. So don't forget to grab a copy once it's out to read all about their stories and all that they've achieved. Thank you all very much for joining us for what's been an extremely memorable evening. Ladies and gentlemen, good night.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn. TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love, whether you're a music lover. Interested in what's going on around the world.
3: I have no idea how this election is going to play out.
2: Or want to catch up on your team's live play-by-plays.
4: It's the Flyers!
2: It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
5: लेकिन ये टेम्पररी और अस्थाई मतलब स्थिति है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे ही खारी युद्ध थोड़ा रुकेगा या बंद होगा तो स्थिति में सुधार हो जाए।
6: विषय राजनीतिक है ही नहीं, मैंने कहा एक सामाजिक व्याधि है। इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा, सभी की दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सभी राजनीतिक पार्टियों की दायित्व है। एनपीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी।

0: हमारा अंदेशा है कि आज हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। ये देशवासी भी उस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री। ये बात सब समझ रहे थे कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद तेल, पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है बढ़ेंगे, और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, और बार बार पेट्रोल डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे।
1: खाड़ी में युद्ध चल रहा है, जहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है वहां पर युद्ध चल रहा है, जहाज आ नहीं पाता है इसके कारण। लेकिन ये टेम्पररी और अस्थाई मतलब स्थिति है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे ही खाड़ी युद्ध थोड़ा रुकेगा या बंद होगा तो स्थिति में सुधार हो जाए।

0: to the Babri case. OVC has said that he hopes the Supreme Court will correct what he calls a flawed judgment. Before I bring in my colleagues for further perspective, let's listen in to reactions that have poured in from across the political and religious spectrum so far.
1: मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। आज देख लो आज क्या हो रहा है। जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी, अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं। कोई पीआईएल डालता है 226 में और कोर्ट कैनॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका।
2: बहुशाला केस में जो हाईकोर्ट का फैसला आया है इससे यकीनी तौर पर मुसलमानों को काफ़ी मायूसी हुई है, क्योंकि आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मुसलमान वहाँ मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। बहरहाल ये हाईकोर्ट का फैसला है, अभी मुसलमानों के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो इस केस को पूरे जिम्मेदारी और पूरी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट किया जाएगा और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में हम लोगों को इंसाफ हासिल होगा।
3: जो इस देश के नियम और कानून है उसके आधार पर काम होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के 3 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का, ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, उससे मिला हुआ है। इस प्रकार का फैसला भी जो आया है ये तो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इस पर किस प्रकार से ये किया जाएगा इस पर अध्ययन किया जाने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री,
4: ये न्यायालयीन लड़ाई 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के हरिशंकर जी जैन, विष्णु जी जैन, रजना अग्निहोत्री जी और विनय जोशी जी के साथ चालू हुई थी, जिसके अंदर बाद में ASI ने वहाँ का बोधशाला का सर्वेक्षण करा, रिपोर्ट पेश हुई और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये सुनवाई का क्रम जारी रहा और आज इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी पूरी आस्था भारत के संविधान में और न्यायपालिका में है और साथ ही जो है जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज की आशा और अपेक्षा के अनुरूप दिया है।
0: And well, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav, who reacted to the Bhotshala verdict and appealed for peace, harmony and brotherhood between the communities. Referring to the Ayodhya example, Chief Minister said that the country has shown that sensitive issues can be resolved peacefully while respecting the court's decision. He also praised the people of Thar for maintaining calm and accepting the verdict responsibly. Listen in to that exclusive conversation.
5: मुख्यमंत्री जी, आपने धार्मिक स्थल की बात की तो इसी पर एक जुड़ा हुआ सवाल है, राज्य के खास घटनाक्रम पर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि जो भोजशाला को लेकर फैसला आया है उस पर मैं बात करना चाह रही हूं। आज इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने ASI के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी। ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
6: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहां तो राहिम और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा। हमारे लिए आदर्श उदाहरण कारण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना। मुझे भोजशाला में भी अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था, लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की, नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी। लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया। मध्यप्रदेश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पे पूरा भरोसा करते हैं। न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले लें जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया।
0: And let's now get to details of the ASI Bhojshala report, Clincher, the 2,000-page report and what it revealed. The first finding of how the existing structure was made from temple remains. Sanskrit inscriptions that had been replaced with Arabic. Inscription of Om Namah Shivaya that was found on the pillar of Bhojshala. Pillars that depict mutilated images of Hindu deities is what the report has indicated. The fifth finding that said that Ganesha, Brahma carvings that were on windows and even the beams of the structure. The sixth finding that revealed that the remains of 94 sculptures and depictions were very much found. The architecture of pillars that suggest that it was part of the temple. Not just that, the report also revealed that the material from previous structure was reused and the old structure remnants that date back to the 10th to the 11th century of the Bhojshala. The 10th finding that said that Khilji inscription said that the temple and the idols had violently been destroyed. Let me cut across to my colleague Ravish Pal Singh joining us live on the broadcast. Ravish, thank you for getting us the latest. First up, big day for Hindu devotees who offered prayers today. Many reactions coming in of how some of them have said that this has been a struggle for years for them to finally reach this day. What really did you witness on the site?
7: देखिए अब बिल्कुल 24 घंटे हो चुके हैं ये फैसला आए हुए हाई कोर्ट और जो मध्य प्रदेश सरकार या फिर साथ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो जिस टेंशन में था पिछले कुछ दिनों से वो आखिरकार अब एक तरीके से खत्म होती यहाँ दिख रही है, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ पे इस तरीके के जब भी कोई जजमेंट या कोई हियरिंग होती थी या ऐसा कोई इवेंट आता था जिसमें हिंदू साइड और मुस्लिम साइड ये आमने सामने आते थे तो एक कॉन्ट्रोवर्सी ना केवल खड़ी होती थी बल्कि वायलेंस भी जो है वो हम इससे पहले देख चुके हैं। कल जब ये फैसला आ रहा था तो इतने सालों की लड़ाई थी और आपको ये सबसे पहले ये जानना जरूरी है लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, कि ये जो विवाद है ये सिर्फ सालों पुराना एक विवाद नहीं है बल्कि इसका और उत्तर प्रदेश के अयोध्या का आपस में बड़ा गहरा नाता है। जिस तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के दो पक्ष लगे हुए थे, ठीक वैसे ही आपत्ति जो है वो भोजशाला को लेके भी थी। मुस्लिम साइड हमेशा से इसे कलाम मौला मॉस्क कहता आया है और हिंदू साइड माँ सरस्वती का टेम्पल, माँ वाग्देवी का मंदिर कहता आया था। इसी को लेकर के पूरा विवाद चला आ रहा था और जब जब दोनों पक्ष सामने पड़ते थे इस भोजशाला में तब तब यहाँ पे उपद्रव हुआ, हिंसा हुई और वायलेंस हुआ काफी ज्यादा। और कल जब इतने सालों पुराने इस विवाद में जजमेंट आना था तो जाहिर सी बात है प्रशासन के सामने, मध्य प्रदेश सरकार के सामने और सबसे बड़ी बात धार के लोगों के सामने ये एक बहुत बड़ा दिन था। दोपहर बाद जब ये जजमेंट आया और इसमें फैसला गया कि ये एक मंदिर है ऑब्वियसली जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम साइड था वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा था, लेकिन हिंदू साइड ने अगले ही सुबह यानी आज सुबह से जो हमने देखा वो धार की भोजशाला में जाना शुरू कर दिया। अभी तक होता ये था कि जो मुस्लिम पक्ष है वो फ्राइडे की प्रेयर जो है जुमा प्रेयर वो यहाँ पे कर सकता था और जो हिंदू साइड है वो ट्यूजडे को यहाँ पे आकर के हनुमान जी की पूजा करता, बाकी हफ्ते के बचे हुए जो 5 दिन होते थे वो वहां पे नॉर्मल लोग 1 रुपए के टिकट पे जाके देख सकते थे कि अंदर क्या कुछ है। लेकिन अब तो जजमेंट आया है, उसने कहीं ना कहीं आज के दिन से ही शुरू कर दिया है, जो हिंदू साइड है वो वहां जाकर के पूजा कर रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि इतने साल पुराना उनका जो संघर्ष था आखिरकार उन्हें इस जजमेंट के बाद वहां पे जीत हासिल होती हुई दिख रही है। लेकिन लड़ाई अभी भी बाकी है, ये हाईकोर्ट का डिसीजन है। मुस्लिम पक्ष कह चुका है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उनका राइट है और वो इस पे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में अब आपको 24 घंटे की टाइमलाइन अगर बता दें तो इन 24 घंटों में हिंदू पक्ष जो है वो अपनी एक बहुत बड़ी जीत मान करके एक फेस्टिवल के रूप में फिलहाल हार में इस जजमेंट को देख रहा है और भोजशाला में जाकर के उसने आज से ही पूजा पाठ शुरू कर दी।
0: बिल्कुल रवीश, रिक्वेस्ट करूंगी बने रहिए हमारे साथ एज वी ऑल्सो टेक आवर व्यूअर्स टू द डिटेल्स ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एंड व्हाट इट स्टेट्स। It states maintaining religious character of shrines as it was in 1947. According to the Act, it also bans conversion of a place of worship. Says all suits, appeals that come to an end with the Act. Ram Janmabhoomi Babri Masjid case is an exception, is what it says. Also stating that historical monument and archaeological sites are exempted. Let me take this to my colleague Anisha Mathur, who continues to stay with us on the broadcast. Anisha, now with the Muslim side preparing to approach the top court, drawing a comparison between Ayodhya and Dhar and saying that every time the same approach can't be used, what more are you picking up to what the plan is?
8: Well, we've been speaking to the petitioners on both sides, and they say that this matter will, of course, have to go to the Supreme Court. Now, Suyesha, there are several questions that are now being asked by the Muslim petitioners, by legal experts on this verdict, on the, how the Madhya Pradesh High Court has heard this matter, particularly since this was a matter where right to worship and right to enter a ASI protected monument has been raised, and the Ayodhya judgment, which was on a title suit, that has been made essentially the basis of that entire discussion and debate, even though the Ayodhya verdict itself has said that this should, the precedent is the precedent value is should not be taken for this verdict. Now, how this interacts with the Places of Worship Act is, and the, as the court has also said, that because the Places of Worship Act itself has a provision that it will not apply to a monument that is ASI protected, that is counted as a ancient or monument of historical importance. Therefore, the High Court has said, well, that bar doesn't exist in the first place. Secondly, what it is saying is that the Hindu side is not saying that this area belongs to us or that the title should be given to us. It remains an ASI protected monument, but the restriction on the entry of Hindus to worship in that temple has been removed. So now we'll have to also see, Suyesha, how exactly is the ASI going to balance the very, very serious need to protect a very fragile monument with the need of the petitioners and the worshippers to enter and offer prayer, particularly as the idol itself does not exist there. The idol is in the British Museum. So we'll have to see how this is going to work out in the future. Back to you.
0: And the request that has also been made to the government on that front. I want to thank you, Anisha, for getting all those details. And before we wrap this edition, we also get you this report by my colleague Ravish Pal Singh from the Bhojshala complex, leaving you with this special report. Thank you for watching.
9: भोजशाला के भीतर जो 104 खंबे हैं, खंबों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहां पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं, और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें, जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है, और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है और काफी ज्यादा कठोर यहाँ निगरानी होती है कई सीसीटीवी कैमरों से, ये पूरा परिसर हम आपको दिखा रहे हैं 104 खंभों पे टिका हुआ, जिसे खुद अब एसआई ने स्वीकृति दी, उसके बाद हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। लेकिन अगर अभी आप देखें तो अभी भी यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त आपको दिख जाएंगे इस पूरे स्थान पर। हर जगह चप्पे चप्पे पर आपको ये जो पुलिस है ये दिखाने के लिए काफी है कि ये कितना बड़ा एक विवाद था जिसे हाईकोर्ट ने काफी हद तक एक अंजाम पे पहुंचाया है। लेकिन अब देखना यह है कि मामला, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट अभी जाएंगे, संवैधानिक रूप से उनका ये अधिकार है और ये रास्ता उनका फिलहाल खुला हुआ।
10: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
11: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
13: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
14: Feels like summer. Monte Carlo. It's the way you make me feel.
15: Three states, three leaders, three defining challenges. In Kerala, V.D. Satishan faces the challenge of reducing debt and providing employment. In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay looks to ensure financial and political stability. And in West Bengal, Suvendu Adhikari aims to make the state a major industrial power. Read it in the latest issue of India Today. Making Sense of India, now available for speed delivery on Amazon and Blinkit. Subscribe now at subscriptions.intoday.in.

0: आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। बात वही है, एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है और हमारे एफर्ट्स की स्केल भी उतनी ही बड़ी है। रिकॉर्ड हाईवे कंस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें और दुनिया का इतना बड़ा रिन्यूएबल एक्सपांशन, बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, आज का भारत कहता है हम ये लक्ष्य पाकर के ही रहेंगे।
1: Some people are trying to start the hate campaign in Kerala that we don't allow anybody. This is secular Kerala. The result of this election is a declaration of Kerala people to the entire country that it is our state is secular, that we will keep it.
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: इंसाफ हासिल होगा।
1: जो इस देश के नियम और कानून है उसके आधार पर काम होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के 3 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए। ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का, ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, उससे मिला हुआ है। इस प्रकार का फैसला भी जो आया है, ये तो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इस पर किस प्रकार से ये किया जाएगा, इस पर अध्ययन किया जाने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री,
2: ये न्यायालयीन लड़ाई 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के हरिशंकर जी जैन, विष्णु जी जैन, रजना अग्निहोत्री जी और विनय जोशी जी के साथ चालू हुई थी, जिसके अंदर बाद में ASI ने वहाँ का गौशाला का सर्वेक्षण करा, रिपोर्ट पेश हुई और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये सुनवाई का क्रम जारी रहा और आज इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी पूरी आस्था भारत के संविधान में और न्यायपालिका में है और साथ ही जो है जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज की आशा और अपेक्षा के अनुरूप दिया है।
3: And well, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav, who reacted to the Bhotshala verdict and appealed for peace, harmony and brotherhood between the communities. Referring to the Ayodhya example, Chief Minister said that the country has shown that sensitive issues can be resolved peacefully while respecting the court's decision. He also praised the people of Thar for maintaining calm and accepting the verdict responsibly. Listen in to that exclusive conversation.
4: मुख्यमंत्री जी, आपने धार्मिक स्थल की बात की तो इसी पर एक जुड़ा हुआ सवाल है, राज्य के खास घटनाक्रम पर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि जो भोजशाला को लेकर फैसला आया है उस पर मैं बात करना चाह रही हूं। आज इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने ASI के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी। ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
5: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहाँ तो राहिम और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा। हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना। मुझे भोजशाला में भी अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था, लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न, लेकिन ये तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी, लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया। मध्यप्रदेश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं, न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले लें जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए, तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया।
3: And let's now get you details of the ASI Bhotshala report, Clincher, the 2,000-page report and what it revealed. The first finding of how the existing structure was made from temple remains. Sanskrit inscriptions that had been replaced with Arabic. Inscription of Om Namah Shivaya that was found on the pillar of Bhotshala. Pillars that depict mutilated images of Hindu deities is what the report has indicated. The fifth finding that said that Ganesha, Brahma carvings that were on windows and even the beams of the structure.

0: आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। बात वही है, एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है और हमारे एफर्ट्स की स्केल भी उतनी ही बड़ी है। रिकॉर्ड हाईवे कंस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें और दुनिया का इतना बड़ा रिन्यूएबल एक्सपांशन, बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, आज का भारत कहता है हम ये लक्ष्य पाकर के ही रहेंगे।
1: सम पीपल आर ट्राइंग टू स्टार्ट द हीट कैंपेन इन केरला दैट वी डोंट अलाउ एनीबडी। दिस इज सेक्युलर केरला। द रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्शन इज अ डिक्लेरेशन ऑफ Kerala people to the entire country that it is our state is secular, that we will keep it.

विषय राजनीतिक है ही नहीं, मैंने कहा एक सामाजिक व्याधि है। इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा, सभी की दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सभी राजनीतिक पार्टियों की दायित्व है। एनपीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी।

0: he sent his son to surrender before the police here in Pentbashirabad. What we are learning is that this case, which involves sexual assault with a minor, 17-year-old girl, whose mother had filed a complaint before the Pentbashirabad police, and the investigation had begun. Remember, the chief minister had intervened into this particular issue and asked the DGP as to what was the investigation that was ongoing, and also ordered an SIT, a special investigation team, that was investigating this particular case. A statement was recorded twice. The minor and the minor statement was recorded twice, after which the sections also were altered. Initially, they were bailable section, is what the lawyers have to say. But now, after the sections were altered, the punishment goes up to more than 20 years or life imprisonment, is what the legal experts have to say. Now, this is a crucial day where, after a long run from May 8th, after the FIR was registered, now Bandi Bhagirath has produced himself before the police, surrendered himself before the police, is what the his father Bandi Sanjay has to say. Remember, he's also filed a case in Karimnagar against the family, the minor's family, alleging extortion. They have asked for 5 crore rupees, is what his alleged, and a case has been registered in the Karimnagar police station against the minor's family. Well, on the other hand, this POXO case that was ongoing in the court, now the police investigation was ongoing, right, and he has surrendered before the police, and now the investigation is set to begin from this particular point.
1: All right, Abdul, many thanks for getting us the latest. Congress hits the streets over the Neeth leak gate. Workers of NSUI, the students' wing of the Grand Old Party, staged a protest outside Union Education Minister Dharmendra Pradhan's residence in the national capital and demanded action against him. A similar scene that unfolded outside the office of the National Testing Agency in Delhi, where NSUI workers also staged a protest. Meanwhile, the Modi government, on the other hand, is going all out against the paper leak mafia. We're getting you this report.
2: The Congress hit the streets on Saturday over the Neet leak gate. Workers of NSUI, the student wing of the Grand Old Party, staged a protest outside Union Education Minister Dharmendra Pradhan's residence in the national capital. Holding placards and the tricolour, the Congress workers raised slogans against the Modi minister, who is caught in the eye of the storm. The protesters were stopped from approaching Pradhan's residence and were temporarily detained when they defied the curbs.
3: So right there, the police action begins in the national capital. These are the karyakartas of Indian Youth Congress who are being detained by the Delhi police personnel, and they have been put into the bus. That is Uday Bhanu Chib, the Youth Congress president, who has been taken into detention by the Delhi police.
2: A similar scene unfolded outside the office of the National Testing Agency in Delhi, where NSUI workers also staged a protest, holding placards and demanding a ban on the NTA.
4: हम बदलाव चाहते हैं. NTA को बैन कराना चाहते हैं. 2000 जब लागू हुआ था NTA, इस मकसद के साथ लागू करा गया था कि जितनी पेपर लीक की समस्या है उसको खत्म करा जाए, उसको समाप्त करा जाए. परंतु जब से NTA लागू हुआ है, पेपर लीक बढ़ते जा रहे. धर्मेंद्र प्रधान, जो देश के शिक्षा मंत्री है, अपने बयानों से भागते हैं, पेपर लीक को आम समझा हुआ है.
2: Not just Netas, even doctors' bodies have expressed concerns over the matter. The United Doctors Front has approached the Supreme Court of India regarding the paper leak, urging the Apex Court to dissolve the NTA.
5: Har paper leak, exam controversy ke baad, students, parents, unki family suffer karti hain. Isliye humne Honorable Supreme Court se demand ki hai. India should now have an independent examination authority created through the Act of Parliament.
2: Meanwhile, the Delhi Medical Association wrote a letter to Pradhan expressing concern over the paper cancellation and demanded strict action against the culprits. The Modi government, on the other hand, is going all out against the paper leak mafia. The CBI has arrested Pune-based chemistry lecturer P.V. Kulkarni, claiming he was the kingpin behind the paper leak. According to investigators, P.V. Kulkarni leaked question papers and answer keys to aspirants during secret tuition sessions in Pune. The accused was linked to the examination process through the National Testing Agency, giving him access to confidential NEET papers for the May 3rd exam. The CBI has also arrested Pune-based senior botany teacher Manisha Mandhari. Meanwhile, Kulkarni and another key accused Manisha Vaghmare have now been sent to 10-day CBI custody. Other accused are also being interrogated. The government has made it clear, no tolerance towards culprits.
6: CBI gehra tak jayegi, kisi ko is baar baksa nahi jayega. पिछले बार भी बक्सा नहीं गया था लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना इसकी राधा कृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है.
2: Paper leaks have been a matter of concern for several governments in the past and even today. The question is, will the Modi government this time dismantle the paper mafia gang permanently, once and for all? With Amit Bhardwaj, Bureau Report, India Today.
1: Colleague Divyesh Singh visited the kingpin P.V. Kulkarni's residence, the same place where he was picked up from by the CBI. Kulkarni stayed at Latur and would often visit Delhi for NTA-related meetings. Take a look.
7: We're right now present in Latur, and behind me you see this is the residence of Professor P.V. Kulkarni, the kingpin in the NEET paper leak case 2026. Mr. P.V. Kulkarni was a chemistry professor at Dayanand College in Latur. After that, he retired and started working for NTA as a subject matter expert. He would help NTA in setting up the NEET question paper. But while setting up the NEET question paper, he also leaked the same questions to some students who had been gathered by another accused, Manisha Vaghmare. And these students, in fact, just a week before the NEET examination 2026, in the last week of April, were tutored, were brought in for classes, special coaching sessions, where P.V. Kulkarni shared the questions with them, orally dictated them the answers, asked them write the answers and by heart it, and these same questions then appeared in the NEET 2026 examinations. From P.V. Kulkarni, the paper goes to Manisha Vaghmare. From Manisha Vaghmare, it goes to Dhananjay Lokhande. Dhananjay Lokhande, it goes to Shubham Khernar. From Shubham Khernar in Nashik, it goes to Yash Yadav in Gurugram. And from Yash Yadav, the paper has gone to the Biwal family in Jaipur, Rajasthan. That is the network that has come to light. Another person arrested by the CBI in this case is Manisha Mandre, a botany professor from Pune. Again, she was also in touch with P.V. Kulkarni. She also worked with NTA for setting up the question paper. Her role is under probe. She has been arrested, but she is also involved in the leak. That is what CBI says. She had also helped set up the botany questions for the NEET 2026 exam, and she has shared the same with the same network, Manisha Vaghmare and P.V. Kulkarni. You can see the house that is located behind me. The ground floor was occupied by P.V. Kulkarni and his family. The first floor has 5 rooms. We spoke to the neighbors and we learned that the 5 rooms on the first floor have been rented out to NEET aspirants who come to Latur to prepare for NEET examinations every year. And around 15 NEET aspirants also stayed here. CBI can question them as well, whether they were contacted by P.V. Kulkarni for the paper or for NEET preparations, because he has taken special sessions, special coaching sessions with Manisha Vaghmare for NEET aspirants in Pune in the last week of April. That has come to light. That has been revealed in court. That has been informed by CBI to court as well. With camera person Ashish Dhamapurkar and Aniket Jadhav, this is Divyesh Singh in Latur for India Today. Sachinji.
1: My colleague Divyesh Singh also spoke with P.V. Kulkarni's ex-student about Kulkarni's past. Listen in to what he said.
7: ये बताइए, आप पीवी कुलकर्णी जी को कब से जानते हैं, कैसे जानते हैं?
8: सर, हमें हम जब पढ़ते थे तब पढ़ाने के लिए सर थे कॉलेज में.
7: और उसके बाद भी आप संपर्क में रहे?
8: यस, उनके बच्चों के काउंसलिंग के बारे में भी सर की मुलाकात 2019 में लास्ट टाइम हुई थी, उसके बाद में मुलाकात नहीं हुई है उनकी.
7: आप लोगों को ये पता था कि पीवी कुलकर्णी जी एनटीए के लिए भी काम करते हैं, पेपर सेटिंग के लिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट?
8: नो नो नो, एक्चुअली 2020 में शायद रिटायर हो गए सर कॉलेज से, और उसके पहले तो नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता है कि एनटीए के लिए फिर बाकी कोई पेपर सेटिंग का काम सर करते हैं।
7: स्टूडेंट रहे हैं आप, उनके कॉलेज में पढ़े हैं, तो क्या कॉलेज में भी ऐसा कोई सस्पिशियस कंडक्ट था पीवी कुलकर्णी जी?
8: नहीं सर, नहीं कभी ऐसे डिटेक्ट यानी नोटिस में तो नहीं आया।
7: इस बार तो सीबीआई का एलिगेशन है कि उन्होंने पेपर लीक कर दिया है।
8: स्ट्रेंज है, हमारे लिए तो स्ट्रेंज है। एक्चुअली जो भी उनका वर्किंग हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कि लातूर में कुछ हुआ होगा। यहाँ पे लातूर में किसी को भी, एक तो वेल नोन भी नहीं है उतने, और ये प्रोसेस यहाँ पे हुआ होगा या फिर यहाँ से कुछ हुआ होगा ऐसे लगता तो नहीं है।
7: सीबीआई ने उन्हें लातूर से ही पकड़ा है।
8: एक्चुअली उनका आना जाना रहता था, लेकिन लातूर में जैसे जब 2020 तक थे ना वैसे नहीं रहते थे, उनका कंटिन्यूअसली बाहर आना जाना चालू रहता था।
1: Let's now get you details and draw the exact characters of this interstate network, the NEET paper leak web, and who exactly are the accused. PV Kulkarni, who is the alleged kingpin, and he was the man who leaked the questions and correct answers to the aspirants in Pune. Manisha Mandhare, who was linked to Kulkarni, she leaked biology questions to the students. Manisha Vaghmare, who is connected to Kulkarni and Mandhare, and she was the one who helped circulate the paper and also received the funds. Dhananjay Lokhande, who is linked to Manisha Vaghmare, provided the NEET paper to Shubham. Dr. Omkar Shingote, who is Lokhande's friend, aided him very closely. And Shubham Khernar was the man who bought the NEET paper online for 10 lakh rupees. Yash Yadav was the one who purchased the paper from Shubham and then sold it to Mangilal. Mangilal Bival, who bought the leaked paper for his son and forwarded it to Dinesh. Dinesh Bival bought the leaked paper for his son. And well, after the Madhya Pradesh High Court declared Bhojshala a temple, a massive political storm is raging on. Finally, the order has opened the doors of Bhojshala and devotees gather inside the temple to offer prayers at the Hindu religious site. Madhya Pradesh High Court order is being hailed as a major victory for the Hindu side. The court also directed the government to provide separate land to Muslims for the construction of a mosque. Within hours of the verdict, the Hindu side had moved the Supreme Court, filing a caveat to ensure they are heard before any order is passed if the ruling is challenged. But even as one side celebrates, the Muslim side has come out swinging. AIMIM Chief Asaduddin Owaisi calling the judgment erroneous, alleging key laws and historical records were ignored, and even claiming the centre sided with the petitioners. AIMPLB cleric Khalid Rashid Farangi Mahali also expressed deep disappointment, saying Muslims have offered namaz at the site for centuries, but making it clear the fight is far from over, with the Supreme Court now the next stop. Meanwhile, MP Chief Minister Mohan Yadav has welcomed the order, calling it a moment that honours cultural heritage and asserting that the right to worship will now be ensured. He has also backed the call to bring back the idol of Maa Vagdevi from the UK, saying that the state will make all possible efforts to facilitate its return.
9: मुख्यमंत्री जी, आपने धार्मिक स्थल की बात की तो इसी पर एक जुड़ा हुआ सवाल है। राज्य के खास घटनाक्रम पर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि जो भोजशाला को लेकर फैसला आया है उस पर मैं बात करना चाह रही हूं। आज इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वागदेवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी। ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
10: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहां तो राहिम और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी, और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक, और उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा। हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना। मुझे भोजशाला में भी अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था, लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की, नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी। लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया। मध्यप्रदेश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं। न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले ले जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया।
11: मेरे को लगभग 30 साल हो गए हैं यहाँ पर संघर्ष करते करते। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ लेकिन कई ऐसे बलिदानी हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। कई जेल यात्राएं गई है, कई तो 30-30 बार जेल गए हैं, कई ने लाठियां खाई हैं, कई पर रासुका लगी है। ऐसे सभी हिंदू वीरों को आज उनको प्रणाम करने का मौका है और धार की जनता के शौर्य को शत-शत प्रणाम है।
12: यह न्यायालयीन लड़ाई 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के हरिशंकर जी जैन, विष्णु जी जैन, रजना अग्निहोत्री जी और विनय जोशी जी के साथ चालू हुई थी, जिसके अंदर बाद में एएसआई ने वहाँ का भोजशाला का सर्वेक्षण करा, रिपोर्ट पेश हुई और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये सुनवाई का क्रम जारी रहा और आज इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी पूरी आस्था भारत के संविधान में और न्यायपालिका में है और साथ ही जो है जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज की आशा और अपेक्षा के अनुरूप दिया है।
13: जो इस देश के नियम और कानून है उसके आधार पर काम होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के 3 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का, ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, स्टे मिला हुआ है। इस प्रकार का फैसला भी जो आया है ये तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इस पर किस प्रकार से ये किया जाएगा इस पर अध्ययन किया जाने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री,
14: मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है, और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। यार देख लो आज क्या हो रहा है, जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी, अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं, कोई पीआईएल डालता है 226 में और कोर्ट कैनॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका।
1: From diplomacy to a relaxed stroll, Prime Minister Modi shared a candid moment with Netherlands Prime Minister Rob Jetten on the sidelines of the bilateral. We're leaving you with those pictures. Thank you so much for watching.

0: mafia gang permanently once and for all. With Amit Bhardwaj, Bureau Report, India Today.
1: Colleague Divyesh Singh visited the kingpin P.V. Kulkarni's residence, the same place where he was picked up from by the CBI. Kulkarni stayed at Latur and would often visit Delhi for NTA-related meetings. Take a look.
2: We're right now present in Latur, and behind me you see this is the residence of Professor P.V. Kulkarni, the kingpin in the NEET paper leak case 2026. Mr. P.V. Kulkarni was a chemistry professor at Dayanand College in Latur. After that, he retired and started working for NTA as a subject matter expert. He would help NTA in setting up the NEET question paper. But while setting up the NEET question paper, he also leaked the same questions to some students who had been gathered by another accused, Manisha Wagmare. And these students, in fact, just a week before the NEET examination 2026, in the last week of April, were tutored, were brought in for classes, special coaching sessions, where P.V. Kulkarni shared the questions with them, orally dictated them the answers, asked them write the answers and by heart it. And these same questions then appeared in the NEET 2026 examinations. From P.V. Kulkarni, the paper goes to Manisha Wagmare. From Manisha Wagmare, it goes to Dhananjay Lokhande. Dhananjay Lokhande, it goes to Shubham Khernar. From Shubham Khernar in Nashik, it goes to Yash Yadav in Gurugram. And from Yash Yadav, the paper has gone to the Biwal family in Jaipur, Rajasthan. That is the network that has come to light. Another person arrested by the CBI in this case is Manisha Mandre, a botany professor from Pune. Again, she was also in touch with P.V. Kulkarni. She also worked with NTA for setting up the question paper. Her role is under probe. She has been arrested, but she is also involved in the leak. That is what CBI says. She had also helped set up the botany questions for the NEET 2026 exam, and she has shared the same with the same network, Manisha Wagmare and P.V. Kulkarni. You can see the house that is located behind me. The ground floor was occupied by P.V. Kulkarni and his family. The first floor has 5 rooms. We spoke to the neighbors and we learned that the 5 rooms on the first floor have been rented out to NEET aspirants who come to Latur to prepare for NEET examinations every year. And around 15 students, 15 NEET aspirants also stayed here. CBI can question them as well, whether they were contacted by P.V. Kulkarni for the paper or for NEET preparations, because he has taken special sessions, special coaching sessions with Manisha Wagmare for NEET aspirants in Pune in the last week of April. That has come to light. That has been revealed in court. That has been informed by CBI to court as well. With camera person Ashish Dhamapurkar and Aniket Jadhav, this is Divyesh Singh in Latur for India Today. Sachin ji.
1: My colleague Divyesh Singh also spoke with P.V. Kulkarni's ex-student about Kulkarni's past. Listen in to what he said.
2: ये बताइए, आप पीवी कुलकर्णी जी को कब से जानते हैं, कैसे जानते हैं?
3: सर, हमें हम जब पढ़ते थे तब पढ़ाने के लिए सर थे कॉलेज में.
2: और उसके बाद भी आप संपर्क में रहे?
3: यस, उनके बच्चों के काउंसलिंग के बारे में भी सर की मुलाकात 2019 में लास्ट टाइम हुई थी, उसके बाद में मुलाकात नहीं हुई होंगी.
2: आप लोगों को ये पता था कि पीवी कुलकर्णी जी एनटीए के लिए भी काम करते हैं, पेपर सेटिंग के लिए, सब्जेक्ट मैटर?
3: नो नो नो, एक्चुअली 2020 में शायद रिटायर हो गए सर कॉलेज से, और उसके पहले तो नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता है कि एनटीए के लिए फिर बाकी कोई पेपर सेटिंग का काम सर करते हैं.
2: स्टूडेंट रहे हैं आप उनके, उनके कॉलेज में पढ़े हैं, तो क्या कॉलेज में भी ऐसा कोई सस्पिशियस कंडक्ट था पीवी कुलकर्णी जी?
3: नहीं सर, नहीं, कभी ऐसे डिटेक्ट यानी नोटिस में तो नहीं आया.
2: इस बार तो सीबीआई का एलिगेशन है कि उन्होंने पेपर लीक कर दिया है.
3: स्ट्रेंज है, हमारे लिए तो स्ट्रेंज है. एक्चुअली जो भी उनका वर्किंग हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कि लातूर में कुछ हुआ होगा. यहाँ पे लातूर में किसी को भी, एक तो वेल नोन भी नहीं है उतने, और ये प्रोसेस यहाँ पे हुआ होगा या फिर यहाँ से कुछ हुआ होगा, ऐसे लगता तो नहीं है.
2: सीबीआई ने उन्हें लातूर से ही पकड़ा है.
3: एक्चुअली उनका आना जाना रहता था, लेकिन लातूर में जैसे जब 2020 तक थे ना, वैसे नहीं रहते थे, उनका कंटिन्यूअसली बाहर आना जाना चालू रहता था.
1: Let's now get you details and draw the exact characters of this interstate network, the NEET paper leak web, and who exactly are the accused. P.V. Kulkarni, who is the alleged kingpin, and he was the man who leaked the questions and correct answers to the aspirants in Pune. Manisha Mandhare, who was linked to Kulkarni, She leaked biology questions to the students. Manisha Vaghmare, who is connected to Kulkarni and Mandhare, and she was the one who helped circulate the paper and also received the funds. Dhananjay Lokhande, who is linked to Manisha Vaghmare, provided the NEET paper to Shubham. Dr. Omkar Shingote, who is Lokhande's friend, aided him very closely. And Shubham Khernar was the man who bought the NEET paper online for 10 lakh rupees. Yash Yadav was the one who purchased the paper from Shubham and then sold it to Mangilal. Mangilal Bival, who bought the leaked paper for his son and forwarded it to Dinesh. Dinesh Bival bought the leaked paper for his son. And well, after the Madhya Pradesh High Court declared Bhojshala a temple, a massive political storm is raging on. Finally, the order has opened the doors of Bhojshala and devotees gathered inside the temple to offer prayers at the Hindu religious site. Madhya Pradesh High Court order is being hailed as a major victory for the Hindu side. The court also directed the government to provide separate land to Muslims for the construction of a mosque. Within hours of the verdict, the Hindu side had moved the Supreme Court, filing a caveat to ensure they are heard before any order is passed if the ruling is challenged. But even as one side celebrates, the Muslim side has come out swinging. AIMIM Chief Asaduddin Owaisi calling the judgment erroneous, alleging key laws and historical records were ignored, and even claiming the centre sided with the petitioners. AIMPLB cleric Khalid Rashid Farangi Mahali also expressed deep disappointment, saying Muslims have offered namaz at the site for centuries, but making it clear the fight is far from over, with the Supreme Court now the next stop. Meanwhile, MP Chief Minister Mohan Yadav has welcomed the order, calling it a moment that honours cultural heritage and asserting that the right to worship will now be ensured. He has also backed the call to bring back the idol of Ma Vagdevi from the UK, saying that the state will make all possible efforts to facilitate its return.
4: मुख्यमंत्री जी, आपने धार्मिक स्थल की बात की तो इसी पर एक जुड़ा हुआ सवाल है. राज्य के खास घटनाक्रम पर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि जो भोजशाला को लेकर फैसला आया है उस पर मैं बात करना चाह रही हूं. आज इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वागदेवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है. कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी. ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं. आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
5: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहां तो राहिरिम और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी. और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक, और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा. हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना. मुझे भोजशाला में भी अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था, लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की. नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी, लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है. और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया. देश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं. न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है. और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए, तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए. मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया.
6: मेरे को लगभग 30 साल हो गए हैं यहां पर. संघर्ष करते करते करते। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कई ऐसे बलिदानी हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, कई जेल यात्राएं गई है, कई तो 30-30 बार जेल गए हैं, कई ने लाठियां खाई हैं, कई पर रासुका लगी है। ऐसे सभी हिंदू वीरों को आज उनको प्रणाम करने का मौका है और धार की जनता के शौर्य को शत-शत प्रणाम है।
7: यह न्यायालयीन लड़ाई 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के हरिशंकर जी जैन, विष्णु जी जैन, रंजना अग्निहोत्री जी और विनय जोशी जी के साथ चालू हुई थी, जिसके अंदर बाद में एएसआई ने वहाँ का गौशाला का सर्वेक्षण करा, रिपोर्ट पेश हुई और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये सुनवाई का क्रम जारी रहा और आज इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी पूरी आस्था भारत के संविधान में और न्यायपालिका में है और साथ ही जो है जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज की आशा और अपेक्षा के अनुरूप दिया है।
8: जो इस देश के नियम और कानून है उसके आधार पर काम होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के 3 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए, ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का, ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, स्टे मिला हुआ है। इस प्रकार का फैसला भी जो आया है, ये तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इस पर किस प्रकार से ये किया जाएगा इस पर अध्ययन किया जाने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री,
9: मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है, और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। आज देख लो आज क्या हो रहा है, जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी, अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं, कोई पीआईएल डालता है 226 में और कोर्ट कैनॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका।
1: Meanwhile, my colleague Ravish Pal Singh also gets us this report from the Bhotshala complex.

0: अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे, जिसको माना गया था हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था, और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है, जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है, और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे। और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है, और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां, ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंभे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी, आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं, इस खंभे के ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। हम दूसरे खंभे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया, और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको भी यहाँ पर एएसआई की टीम जब यहाँ सर्वे करने आई थी तो इसे कवर किया गया था, क्योंकि यहाँ पर भी इस प्रतिमा को पूरी तरीके से घिस दिया गया था। और यहाँ पे अगर आप देखें ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है, और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। भोजशाला के भीतर जो 104 खंभे हैं, खंभों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं, और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है, और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है, और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है, और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है और काफी ज्यादा कठोर यहाँ निगरानी होती है कई सीसीटीवी कैमरों से, ये पूरा परिसर हम आपको दिखा रहे हैं 104 खंभों पे टिका हुआ, जिसे खुद अब एएसआई ने स्वीकृति दी, उसके बाद हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। लेकिन अगर अभी आप देखें तो अभी भी यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त आपको दिख जाएंगे इस पूरे स्थान पर।
1: From diplomacy to a relaxed stroll, Prime Minister Modi shared a candid moment with Netherlands Prime Minister Rob Jetten on the sidelines of the bilateral. We're leaving you with those pictures. Thank you so much for watching.

भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर वाटर सिक्योरिटी तक नीदरलैंड्स और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारा कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और नीदरलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी और इसका लाभ आप सभी को भी होगा। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा। और इस जर्नी में हमारा डायस्पोरा ट्रस्टेड ब्रिज बन सकता है।

0: फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे, जिसको माना गया था हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बनाया बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था, और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है, जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है, और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे। और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है, और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां, ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंभे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी, आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं, इस खंभे के ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। हम दूसरे खंभे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया, और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको भी यहाँ पर एएसआई की टीम जब यहाँ सर्वे करने आई थी तो इसे कवर किया गया था, क्योंकि यहाँ पर भी इस प्रतिमा को पूरी तरीके से घिस दिया गया था। और यहाँ पे अगर आप देखें ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है, और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। भोजशाला के भीतर जो 104 खंभे हैं, खंभों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं, और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है, और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है, और उसके बाद यहाँ पे यह यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है, और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है और काफी ज्यादा कठोर यहाँ निगरानी होती है कई सीसीटीवी कैमरों से, ये पूरा परिसर हम आपको दिखा रहे हैं 104 खंभों पे टिका हुआ, जिसे खुद अब एएसआई ने स्वीकृति दी, उसके बाद हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। लेकिन अगर अभी आप देखें तो अभी भी यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त आपको दिख जाएंगे इस पूरे स्थान पर।
1: From diplomacy to a relaxed stroll, Prime Minister Modi shared a candid moment with Netherlands Prime Minister Rob Jetten on the sidelines of the bilateral. We're leaving you with those pictures. Thank you so much for watching.

0: Mandhari. Meanwhile, Kulkarni and another key accused, Manisha Waghmare, have now been sent to 10-day CBI custody. Other accused are also being interrogated. The government has made it clear, no tolerance towards culprits.
1: CBI gehra tak jayegi, kisi ko is bar baksa nahi jayega. Pichle bar bhi baksa nahi gaya tha, lekin is bar bhi. Ye maine kaha na, iski Radha Krishna committee ko pura lagu karne ke bavajood bhi ye ghatna hui hai.
0: Paper leaks have been a matter of concern for several governments in the past and even today. The question is, will the Modi government this time dismantle the paper mafia gang permanently, once and for all? With Amit Bhardwaj, Bureau Report, India Today.
2: Colleague Divyesh Singh visited the kingpin P.V. Kulkarni's residence, the same place where he was picked up from by the CBI. Kulkarni stayed at Latur and would often visit Delhi for NTA-related meetings. Take a look.
3: We're right now present in Latur, and behind me you see this is the residence of Professor P.V. Kulkarni, the kingpin in the NEET paper leak case 2026. Mr. P.V. Kulkarni was a chemistry professor at Dayanand College in Latur. After that, he retired and started working for NTA as a subject matter expert. He would help NTA in setting up the NEET question paper. But while setting up the NEET question paper, he also leaked the same questions to some students who had been gathered by another accused, Manisha Waghmare. And these students, in fact, just a week before the NEET examination 2026, in the last week of April, were tutored, were brought in for classes, special coaching sessions, where P.V. Kulkarni shared the questions with them, orally dictated them the answers, asked them write the answers and by heart it. And these same questions then appeared in the NEET 2026 examinations. From P.V. Kulkarni, the paper goes to Manisha Waghmare. From Manisha Waghmare, it goes to Dhananjay Lokhande. Dhananjay Lokhande, it goes to Shubham Khernar. From Shubham Khernar in Nashik, it goes to Yash Yadav in Gurugram. And from Yash Yadav, the paper has gone to the Biwal family in Jaipur, Rajasthan. That is the network that has come to light. Another person arrested by the CBI in this case is Manisha Mandre, a botany professor from Pune. Again, she was also in touch with P.V. Kulkarni. She also worked with NTA for setting up the question paper. Her role is under probe. She has been arrested, but she is also involved in the leak. That is what CBI says. She had also helped set up the botany questions for the NEET 2026 exam, and she has shared the same with the same network, Manisha Waghmare and P.V. Kulkarni. You can see the house that is located behind me. The ground floor was occupied by P.V. Kulkarni and his family. The first floor has 5 rooms. We spoke to the neighbors and we learned that the 5 rooms on the first floor have been rented out to NEET aspirants who come to Latur to prepare for NEET examinations every year. And around 15 students, 15 NEET aspirants also stayed here. CBI can question them as well, whether they were contacted by P.V. Kulkarni for the paper or for NEET preparations, because he has taken special sessions, special coaching sessions with Manisha Waghmare for NEET aspirants in Pune in the last week of April. That has come to light. That has been revealed in court. That has been informed by CBI to court as well. With camera person Ashish Dhamapurkar and Aniket Jadhav, this is Divyesh Singh in Latur for India Today. Sachin ji.
2: My colleague Divyesh Singh also spoke with P.V. Kulkarni's ex-student about Kulkarni's past. Listen in to what he said.
3: ये बताइए, आप P.V. Kulkarni जी को कब से जानते हैं, कैसे जानते हैं?
4: सर, हमें हम जब पढ़ते थे तब पढ़ाने के लिए सर थे कॉलेज में.
3: और उसके बाद भी आप संपर्क में रहे?
4: यस, उनके बच्चों के काउंसलिंग के बारे में भी सर की मुलाकात 2019 में लास्ट टाइम हुई थी, उसके बाद में मुलाकात नहीं हुई होंगी.
3: आप लोगों को ये पता था कि पीवी कुलकर्णी जी एनटीए के लिए भी काम करते हैं, पेपर सेटिंग के लिए, सब्जेक्ट मैटर?
4: नो, एक्चुअली 2020 में शायद रिटायर हो गए सर कॉलेज से, और उसके पहले तो नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता है कि एनटीए के लिए फिर बाकी कोई पेपर सेटिंग का काम सर करते हैं.
3: स्टूडेंट रहे हैं आप उनके, उनके कॉलेज में पढ़े हैं, तो क्या कॉलेज में भी ऐसा कोई सस्पिशियस कंडक्ट था पीवी कुलकर्णी जी?
4: नहीं सर, नहीं, कभी ऐसे डिटेक्ट यानी नोटिस में तो नहीं आया.
3: इस बार तो सीबीआई का एलिगेशन है कि उन्होंने पेपर लीक कर दिया है।
4: स्ट्रेंज है, हमारे लिए तो स्ट्रेंज है। एक्चुअली जो भी उनका वर्किंग हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कि लातूर में कुछ हुआ होगा। यहाँ पे लातूर में किसी को भी, एक तो वेल नोन भी नहीं है उतने, और ये प्रोसेस यहाँ पे हुआ होगा या फिर यहाँ से कुछ हुआ होगा ऐसे लगता तो नहीं है।
3: सीबीआई ने उन्हें लातूर से ही पकड़ा है।
4: एक्चुअली उनका आना जाना रहता था, लेकिन लातूर में जैसे जब 2020 तक थे ना वैसे नहीं रहते थे, उनका कंटिन्यूसली बाहर आना जाना चालू रहता था।
2: Let's now get you details and draw the exact characters of this interstate network, the NEET paper leak web, and who exactly are the accused. P.V. Kulkarni, who is the alleged kingpin, and he was the man who leaked the questions and correct answers to the aspirants in Pune. Manisha Mandhare, who was linked to Kulkarni, she leaked biology questions to the students. Manisha Vaghmare, who is connected to Kulkarni and Mandhare, and she was the one who helped circulate the paper and also received the funds. Dhananjay Lokhande, who is linked to Manisha Vaghmare, provided the NEET paper to Shubham. Dr. Omkar Shingote, who is Lokhande's friend, aided him very closely. And Shubham Khernar was the man who bought the NEET paper online for 10 lakh rupees. Yash Yadav was the one who purchased the paper from Shubham and then sold it to Mangilal. Mangilal Bival, who bought the leaked paper for his son and forwarded it to Dinesh. Dinesh Bival bought the leaked paper for his son. And well, after the Madhya Pradesh High Court declared Bhojshala a temple, a massive political storm is raging on. Finally, the order has opened the doors of Bhojshala and devotees gather inside the temple to offer prayers at the Hindu religious site. Madhya Pradesh High Court order is being hailed as a major victory for the Hindu side. The court also directed the government to provide separate land to Muslims for the construction of a mosque. Within hours of the verdict, the Hindu side had moved the Supreme Court, filing a caveat to ensure they are heard before any order is passed if the ruling is challenged. But even as one side celebrates, the Muslim side has come out swinging. AIMIM Chief Asaduddin Owaisi calling the judgment erroneous, alleging key laws and historical records were ignored, and even claiming the centre sided with the petitioners. AIMPLB cleric Khalid Rashid Farangi Mahali also expressed deep disappointment, saying Muslims have offered namaz at the site for centuries, but making it clear the fight is far from over, with the Supreme Court now the next stop. Meanwhile, MP Chief Minister Mohan Yadav has welcomed the order, calling it a moment that honours cultural heritage and asserting that the right to worship will now be ensured. He has also backed the call to bring back the idol of Ma Vagdevi from the UK, saying that the state will make all possible efforts to facilitate its return.
5: मुख्यमंत्री जी, आपने धार्मिक स्थल की बात की तो इसी पर एक जुड़ा हुआ सवाल है। राज्य के खास घटनाक्रम पर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि जो भोजशाला को लेकर फैसला आया है उस पर मैं बात करना चाह रही हूं। आज इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वागदेवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी। ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
6: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहां तो राहिज्म और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी, और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक, और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा। हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना। मुझे भोजशाला में भी अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था, लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की थी, नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी। लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया। मध्यप्रदेश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं। न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले लें जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया।
7: मेयर को लगभग 30 साल हो गए हैं यहाँ पर संघर्ष करते करते। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं लेकिन कई ऐसे बलिदानी हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, कई जेल यात्राएं गई है, कई तो 30-30 बार जेल गए हैं, कई ने लाठियां खाई हैं, कई पे रासुका लगी है। ऐसे सभी हिंदू वीरों को आज उनको प्रणाम करने का मौका है और धार की जनता के शौर्य को शत-शत प्रणाम है।
8: यह न्यायालयीन लड़ाई 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के हरिशंकर जी जैन, विष्णु जी जैन, रजना अग्निहोत्री जी और विनय जोशी जी के साथ चालू हुई थी, जिसके अंदर बाद में एएसआई ने वहाँ का गौशाला का सर्वेक्षण करा, रिपोर्ट पेश हुई और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये सुनवाई का क्रम जारी रहा और आज इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी पूरी आस्था भारत के संविधान में और न्यायपालिका में है और साथ ही जो है जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज की आशा और अपेक्षा के अनुरूप दिया है।
9: जो इस देश के नियम और कानून है उसके आधार पर काम होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के 3 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए, ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का, ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, स्टे मिला हुआ है। इस प्रकार का फैसला भी जो आया है ये तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट चाहिए, इस पर किस प्रकार से ये किया जाएगा इस पर अध्ययन किया जाने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री,
10: मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। आज देख लो आज क्या हो रहा है, जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी, अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं, कोई पीआईएल डालता है 226 में और कोर्ट कैनॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका।
2: Meanwhile, my colleague Ravish Pal Singh also gets us this report from the Bhojshala complex.

0: अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था, हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे। और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। और जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंभे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी, आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं इस खंभे के, ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। हम दूसरे खंभे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको भी यहाँ पर एएसआई की टीम जब यहाँ सर्वे करने आई थी तो इसे कवर किया गया था क्योंकि यहाँ पर भी इस प्रतिमा को पूरी तरीके से घिस दिया गया था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। भोजशाला के भीतर जो 104 खंभे हैं, खंभों पे आकृतियां हैं, उन सबके बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है और उसके बाद यहाँ पे यह यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है और काफी ज्यादा कठोर यहाँ निगरानी होती है कई सीसीटीवी कैमरों से, ये पूरा परिसर हम आपको दिखा रहे हैं 104 खंभों पे टिका हुआ जिसे खुद अब एएसआई ने स्वीकृति दी, उसके बाद हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। लेकिन अगर अभी आप देखें तो अभी भी यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त आपको दिख जाएंगे इस पूरे स्थान पर।
1: From diplomacy to a relaxed stroll, Prime Minister Modi shared a candid moment with Netherlands Prime Minister Rob Jetten on the sidelines of the bilateral. We're leaving you with those pictures. Thank you so much for watching.

आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। बात वही है, एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है और हमारे एफर्ट्स की स्केल भी उतनी ही बड़ी है। रिकॉर्ड हाईवे कंस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें और दुनिया का इतना बड़ा रिन्यूएबल एक्सपांशन, बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, आज का भारत कहता है हम ये लक्ष्य पाकर के ही रहेंगे।

0: फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे, जिसको माना गया था हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बनाया बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था, और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है, जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है, और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे। और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है, और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंभे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी, आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं, इस खंभे के ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। हम दूसरे खंभे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया, और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको भी यहाँ पर एएसआई की टीम जब यहाँ सर्वे करने आई थी तो इसे कवर किया गया था क्योंकि यहाँ पर भी इस प्रतिमा को पूरी तरीके से घिस दिया गया था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है, और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। भोजशाला के भीतर जो 104 खंभे हैं, खंभों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है, और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है, और उसके बाद यहाँ पे यह यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड, और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है और काफी ज्यादा कठोर यहाँ निगरानी होती है कई सीसीटीवी कैमरों से, ये पूरा परिसर हम आपको दिखा रहे हैं 104 खंभों पे टिका हुआ, जिसे खुद अब एएसआई ने स्वीकृति दी, उसके बाद हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। लेकिन अगर अभी आप देखें तो अभी भी यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त आपको दिख जाएंगे इस पूरे स्थान पर।
1: From diplomacy to a relaxed stroll, Prime Minister Modi shared a candid moment with Netherlands Prime Minister Rob Jetten on the sidelines of the bilateral. We're leaving you with those pictures. Thank you so much for watching.

0: time, dismantle the paper mafia gang permanently, once and for all. With Amit Bhardwaj, Bureau Report, India Today.
1: Colleague Divyesh Singh visited the kingpin P.V. Kulkarni's residence, the same place where he was picked up from by the CBI. Kulkarni stayed at Latur and would often visit Delhi for NTA-related meetings. Take a look.
2: We're right now present in Latur, and behind me you see this is the residence of Professor P.V. Kulkarni, the kingpin in the NEET paper leak case 2026. Mr. P.V. Kulkarni was a chemistry professor at Dayanand College in Latur. After that, he retired and started working for NTA as a subject matter expert. He would help NTA in setting up the NEET question paper. But while setting up the NEET question paper, he also leaked the same questions to some students who had been gathered by another accused, Manisha Waghmare. And these students, in fact, just a week before the NEET examination 2026, in the last week of April, were tutored, were brought in for classes, special coaching sessions, where P.V. Kulkarni shared the questions with them, orally dictated them the answers, asked them write the answers and by heart it. And these same questions then appeared in the NEET 2026 examinations. From P.V. Kulkarni, the paper goes to Manisha Waghmare. From Manisha Waghmare, it goes to Dhananjay Lokhande. Dhananjay Lokhande, it goes to Shubham Khernar. From Shubham Khernar in Nashik, it goes to Yash Yadav in Gurugram. And from Yash Yadav, the paper has gone to the Biwal family in Jaipur, Rajasthan. That is the network that has come to light. Another person arrested by the CBI in this case is Manisha Mandre, a botany professor from Pune. Again, she was also in touch with P.V. Kulkarni. She also worked with NTA for setting up the question paper. Her role is under probe. She has been arrested, but she is also involved in the leak. That is what CBI says. She had also helped set up the botany questions for the NEET 2026 exam, and she has shared the same with the same network, Manisha Waghmare and P.V. Kulkarni. You can see the house that is located behind me. The ground floor was occupied by P.V. Kulkarni and his family. The first floor has 5 rooms. We spoke to the neighbors and we learned that the 5 rooms on the first floor have been rented out to NEET aspirants who come to Latur to prepare for NEET examinations every year. And around 15 NEET aspirants also stayed here. CBI can question them as well, whether they were contacted by P.V. Kulkarni for the paper or for NEET preparations, because he has taken special sessions, special coaching sessions with Manisha Waghmare for NEET aspirants in Pune in the last week of April. That has come to light. That has been revealed in court. That has been informed by CBI to court as well. With camera person Ashish Dhamapurkar and Aniket Jadhav, this is Divyesh Singh in Latur for India Today. Sachin ji.
1: Let's now get you details and draw the exact characters of this interstate network, the NEET paper leak web, and who exactly are the accused. P.V. Kulkarni, who is the alleged kingpin, and he was the man who leaked the questions and correct answers to the aspirants in Pune. Manisha Mandhare, who was linked to Kulkarni, she leaked biology questions to the students. Manisha Waghmare, who is connected to Kulkarni and Mandhare, and she was the one who helped circulate the paper and also received the funds. Dhananjay Lokhande, who is linked to Manisha Waghmare, provided the NEET paper to Shubham. Dr. Omkar Shingote, who is Lokhande's friend, aided him very closely. And Shubham Khernar was the man who bought the NEET paper online for 10 lakh rupees. Yash Yadav was the one who purchased the paper from Shubham and then sold it to Mangilal. Mangilal Biwal, who bought the leaked paper for his son and forwarded it to Dinesh. Dinesh Biwal bought the leaked paper for his son. And well, after the Madhya Pradesh High Court declared Bhojshala a temple, a massive political storm is raging on. Finally, the order has opened the doors of Bhojshala and devotees gathered inside the temple to offer prayers at the Hindu religious site. Madhya Pradesh High Court order is being hailed as a major victory for the Hindu side. The court also directed the government to provide separate land to Muslims for the construction of a mosque. Within hours of the verdict, the Hindu side had moved the Supreme Court, filing a caveat to ensure they are heard before any order is passed if the ruling is challenged. But even as one side celebrates, the Muslim side has come out swinging. AIMIM Chief Asaduddin Owaisi calling the judgment erroneous, alleging key laws and historical records were ignored, and even claiming the centre sided with the petitioners. AIMPLB cleric Khalid Rashid Farangi Mahali also expressed deep disappointment, saying Muslims have offered namaz at the site for centuries, but making it clear the fight is far from over, with the Supreme Court now the next stop. Meanwhile, MP Chief Minister Mohan Yadav has welcomed the order, calling it a moment that honours cultural heritage and asserting that the right to worship will now be ensured. He has also backed the call to bring back the idol of Maa Vagdevi from the UK, saying that the state will make all possible efforts to facilitate its return.
3: मुख्यमंत्री जी, आपने धार्मिक स्थल की बात की तो इसी पर एक जुड़ा हुआ सवाल है. राज्य के खास घटनाक्रम पर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि जो भोजशाला को लेकर फैसला आया है उस पर मैं बात करना चाह रही हूं. आज इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वागदेवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है. कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी. ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं. आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
4: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहां तो राहिरी और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी. और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक, और उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा. हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना. मुझे भोजशाला में भी अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था, लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की. नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी, लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है. और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया. देश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं. न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है. और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले ले जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए, तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए. मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया.
5: मेरे को लगभग 30 साल हो गए हैं यहां पर संघर्ष करते करते. मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन कई ऐसे बलिदानी हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है. कई जेल यात्राएं गई है, कई तो 30-30 बार जेल गए हैं, कई ने लाठियां खाई हैं, कई पर आंसुका लगी है. ऐसे सभी हिंदू वीरों को आज उनको प्रणाम करने का मौका है और धार की जनता के शौर्य को शत-शत प्रणाम है.
6: यह न्यायालयीन लड़ाई 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के हरिशंकर जी जैन, विष्णु जी जैन, रजना अग्निहोत्री जी और विनय जोशी जी के साथ चालू हुई थी, जिसके अंदर बाद में एएसआई ने वहाँ का भोजशाला का सर्वेक्षण करा, रिपोर्ट पेश हुई और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये सुनवाई का क्रम जारी रहा. और आज इस फैसले का हम स्वागत करते हैं. हमारी पूरी आस्था भारत के संविधान में और न्यायपालिका में है, और साथ ही जो है जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज की आशा और अपेक्षा के अनुरूप दिया है.
7: जो इस देश के नियम और कानून है उसके आधार पर काम होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के 3 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए. ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का, ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, स्टे मिला हुआ है। इस प्रकार का फैसला भी जो आया है, ये तो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इस पर किस प्रकार से ये किया जाएगा, इस पर अध्ययन किया जाने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री,
8: मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है, जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है, और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था, ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। देख लो आज क्या हो रहा है। जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी, अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं। कोई PIL डालता है 226 में और कोर्ट कैनॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका।
1: Meanwhile, my colleague Ravish Pal Singh also gets us this report from the Bhojshala complex.

0: अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे, जिसको माना गया था हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था, और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है, जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है, और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे। और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमाय जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है, और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां, ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंभे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी, आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं, इस खंभे के ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। हम दूसरे खंभे पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया, और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको भी यहाँ पर एएसआई की टीम जब यहाँ सर्वे करने आई थी तो इसे कवर किया गया था क्योंकि यहाँ पर भी इस प्रतिमा को पूरी तरीके से घिस दिया गया था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है, और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है, और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। भोजशाला के भीतर जो 104 खंभे हैं, खंभों पे आकृतियां हैं, उन सबके बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं, और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था, ये यज्ञ कुंड है। बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है, और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है, और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड, और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं, और ये पूरा परिसर है। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है और काफी ज्यादा कठोर यहाँ निगरानी होती है कई सीसीटीवी कैमरों से, ये पूरा परिसर हम आपको दिखा रहे हैं 104 खंभों पे टिका हुआ, जिसे खुद अब एएसआई ने स्वीकृति दी, उसके बाद हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। लेकिन अगर अभी आप देखें तो अभी भी यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त आपको दिख जाएंगे इस पूरे स्थान पर।
1: From diplomacy to a relaxed stroll, Prime Minister Modi shared a candid moment with Netherlands Prime Minister Rob Jetten on the sidelines of the bilateral. We're leaving you with those pictures. Thank you so much for watching.

0: भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर वाटर सिक्योरिटी तक नीदरलैंड्स और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारा कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और नीदरलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी और इसका लाभ आप सभी को भी होगा। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा। और इस जर्नी में हमारा डायस्पोरा ट्रस्टेड ब्रिज बन सकता है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
2: You are watching India Today.

0: अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था, हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बनाया बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे। और हम आपको लेके चलते हैं गौशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां, ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंभे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी, आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं, इस खंभे के ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। हम दूसरे खंभे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको भी यहाँ पर एएसआई की टीम जब यहाँ सर्वे करने आई थी तो इसे कवर किया गया था क्योंकि यहाँ पर भी इस प्रतिमा को पूरी तरीके से घिस दिया गया था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया, बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। गौशाला के भीतर जो 104 खंभे हैं, खंभों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था, ये यज्ञ कुंड है। बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है, उसे भी यहाँ रखा जाता है और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं और ये पूरा परिसर है। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है और काफी ज्यादा कठोर यहाँ निगरानी होती है कई सीसीटीवी कैमरों से, ये पूरा परिसर हम आपको दिखा रहे हैं 104 खंभों पे टिका हुआ जिसे खुद अब एएसआई ने स्वीकृति दी, उसके बाद हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। लेकिन अगर अभी आप देखें तो अभी भी यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त आपको दिख जाएंगे इस पूरे स्थान पर।
1: From diplomacy to a relaxed stroll, Prime Minister Modi shared a candid moment with Netherlands Prime Minister Rob Jetten on the sidelines of the bilateral. Leaving you with those pictures. Thank you so much for watching.

0: and started working for NTA as a subject matter expert. He would help NTA in setting up the NEET question paper. But while setting up the NEET question paper, he also leaked the same questions to some students who had been gathered by another accused, Manisha Waghmare. And these students, in fact, just a week before the NEET examination 2026, in the last week of April, were tutored, were brought in for classes, special coaching sessions, where P.V. Kulkarni shared the questions with them, orally dictated them the answers, asked them write the answers and by heart it. And these same questions then appeared in the NEET 2026 examinations. From P.V. Kulkarni, the paper goes to Manisha Waghmare. From Manisha Waghmare, it goes to Dhananjay Lokhande. Dhananjay Lokhande, it goes to Shubham Khernar. From Shubham Khernar in Nashik, it goes to Yash Yadav in Gurugram. And from Yash Yadav, the paper has gone to the Biwal family in Jaipur, Rajasthan. That is the network that has come to light. Another person arrested by the CBI in this case is Manisha Mandre, a botany professor from Pune. Again, she was also in touch with P.V. Kulkarni. She also worked with NTA for setting up the question paper. Her role is under probe. She has been arrested, but she is also involved in the leak. That is what CBI says. She had also helped set up the botany questions for the NEET 2026 exam, and she has shared the same with the same network, Manisha Waghmare and P.V. Kulkarni. You can see the house that is located behind me. The ground floor was occupied by P.V. Kulkarni and his family. The first floor has 5 rooms. We spoke to the neighbors and we learned that the 5 rooms on the first floor have been rented out to NEET aspirants who come to Latur to prepare for NEET examinations every year. And around 15 NEET aspirants also stayed here. CBI can question them as well, whether they were contacted by P.V. Kulkarni for the paper or for NEET preparations, because he has taken special sessions, special coaching sessions with Manisha Waghmare for NEET aspirants in Pune in the last week of April. That has come to light. That has been revealed in court. That has been informed by CBI to court as well. With camera person Ashish Dhamapurkar and Aniket Jadhav, this is Divesh Singh in Latur for India Today. Sachinji.
1: Let's now get you details and draw the exact characters of this interstate network, the NEET paper leak web, and who exactly are the accused. P.V. Kulkarni, who is the alleged kingpin, and he was the man who leaked the questions and correct answers to the aspirants in Pune. Manisha Mandhare, who was linked to Kulkarni, she leaked biology questions to the students. Manisha Waghmare, who is connected to Kulkarni and Mandhare, and she was the one who helped circulate the paper and also received the funds. Dhananjay Lokhande, who is linked to Manisha Waghmare, provided the NEET paper to Shubham. Dr. Omkar Shingote, who is Lokhande's friend, aided him very closely. And Shubham Khernar was the man who bought the NEET paper online for 10 lakh rupees. Yash Yadav was the one who purchased the paper from Shubham and then sold it to Mangilal. Mangilal Biwal, who bought the leaked paper for his son and forwarded it to Dinesh. Dinesh Biwal bought the leaked paper for his son. And well, after the Madhya Pradesh High Court declared Bhojshala a temple, a massive political storm is raging on. Finally, the order has opened the doors of Bhojshala and devotees gathered inside the temple to offer prayers at the Hindu religious site. Madhya Pradesh High Court order is being hailed as a major victory for the Hindu side. The court also directed the government to provide separate land to Muslims for the construction of a mosque. Within hours of the verdict, the Hindu side had moved the Supreme Court, filing a caveat to ensure they are heard before any order is passed if the ruling is challenged. But even as one side celebrates, the Muslim side has come out swinging. AIMIM Chief Asaduddin Owaisi calling the judgment erroneous, alleging key laws and historical records were ignored, and even claiming the centre sided with the petitioners. AIMPLB cleric Khalid Rashid Farangi Mahali also expressed deep disappointment, saying Muslims have offered namaz at the site for centuries, but making it clear the fight is far from over, with the Supreme Court now the next stop. Meanwhile, MP Chief Minister Mohan Yadav has welcomed the order, calling it a moment that honours cultural heritage and asserting that the right to worship will now be ensured. He has also backed the call to bring back the idol of Maa Vagdevi from the UK, saying that the state will make all possible efforts to facilitate its return.
2: मुख्यमंत्री जी, आपने धार्मिक स्थल की बात की तो इसी पर एक जुड़ा हुआ सवाल है. राज्य के खास घटनाक्रम पर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि जो भोजशाला को लेकर फैसला आया है उस पर मैं बात करना चाह रही हूं. आज इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वागदेवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है. कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी. ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं. आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
3: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहां तो राहिर्म और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी. और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक, और उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा. हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना. मुझे भोजशाला में भी अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था, लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की. नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी, लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है. और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया. मध्यप्रदेश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं. न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है. और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले ले जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए, तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए. मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया.
4: मेरे को लगभग 30 साल हो गए हैं यहां पर संघर्ष करते करते. मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन कई ऐसे बलिदानी हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है. कई जेल यात्राएं गई है, कई तो 30-30 बार जेल गए हैं, कई ने लाठियां खाई हैं, कई पर आंसुका लगी है. ऐसे सभी हिंदू वीरों को आज उनको प्रणाम करने का मौका है और धार की जनता के शौर्य को शत-शत प्रणाम है.
5: यह न्यायालयीन लड़ाई 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के हरिशंकर जी जैन, विष्णु जी जैन, रजना अग्निहोत्री जी और विनय जोशी जी के साथ चालू हुई थी, जिसके अंदर बाद में एएसआई ने वहाँ का भोजशाला का सर्वेक्षण करा, रिपोर्ट पेश हुई और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये सुनवाई का क्रम जारी रहा. और आज इस फैसले का हम स्वागत करते हैं. हमारी पूरी आस्था भारत के संविधान में और न्यायपालिका में है, और साथ ही जो है जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज की आशा और अपेक्षा के अनुरूप दिया है.
6: जो इस देश के नियम और कानून है उसके आधार पर काम होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के 3 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए. ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का, ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, उससे मिला हुआ है. इस प्रकार का फैसला भी जो आया है, ये तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इस पर किस प्रकार से ये किया जाएगा इस पर अध्ययन किया जाने की आवश्यकता. मुख्यमंत्री,
7: मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है, और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। आज देख लो आज क्या हो रहा है। जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी, अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं। कोई पीआईएल डालता है 226 में और कोर्ट कैनॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका।
1: Meanwhile, my colleague Ravish Pal Singh also gets us this report from the Bhojshala complex.

0: अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे, जिसको माना गया था हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था, और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है, जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है, और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे। और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमाय जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है, और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां, ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंभे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी, आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं, इस खंभे के ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। हम दूसरे खंभे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया, और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको भी यहाँ पर एएसआई की टीम जब यहाँ सर्वे करने आई थी तो इसे कवर किया गया था क्योंकि यहाँ पर भी इस प्रतिमा को पूरी तरीके से घिस दिया गया था। और यहाँ पे अगर आप देखें ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है, और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है, और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। भोजशाला के भीतर जो 104 खंभे हैं, खंभों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं, और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था, ये यज्ञ कुंड है। बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है, और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है, और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड, और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं, और ये पूरा परिसर है। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है और काफी ज्यादा कठोर यहाँ निगरानी होती है कई सीसीटीवी कैमरों से, ये पूरा परिसर हम आपको दिखा रहे हैं 104 खंभों पे टिका हुआ, जिसे खुद अब एएसआई ने स्वीकृति दी, उसके बाद हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। लेकिन अगर अभी आप देखें तो अभी भी यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त आपको दिख जाएंगे इस पूरे स्थान पर।
1: From diplomacy to a relaxed stroll, Prime Minister Modi shared a candid moment with Netherlands Prime Minister Rob Jetten on the sidelines of the bilateral. We're leaving you with those pictures. Thank you so much for watching.

आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। बात वही है, एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है और हमारे एफर्ट्स की स्केल भी उतनी ही बड़ी है। रिकॉर्ड हाईवे कंस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें और दुनिया का इतना बड़ा रिन्यूएबल एक्सपांशन, बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, आज का भारत कहता है हम ये लक्ष्य पाकर के ही रहेंगे।

0: फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था। हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे। और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमाय जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंभे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी, आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं, इस खंभे के ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। हम दूसरे खंभे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको भी यहाँ पर एएसआई की टीम जब यहाँ सर्वे करने आई थी तो इसे कवर किया गया था क्योंकि यहाँ पर भी इस प्रतिमा को पूरी तरीके से घिस दिया गया था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। भोजशाला के भीतर जो 104 खंभे हैं, खंभों पे आकृतियां हैं, उन सबके बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है और काफी ज्यादा कठोर यहाँ निगरानी होती है कई सीसीटीवी कैमरों से, ये पूरा परिसर हम आपको दिखा रहे हैं 104 खंभों पे टिका हुआ जिसे खुद अब एएसआई ने स्वीकृति दी, उसके बाद हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। लेकिन अगर अभी आप देखें तो अभी भी यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त आपको दिख जाएंगे इस पूरे स्थान पर।
1: From diplomacy to a relaxed stroll, Prime Minister Modi shared a candid moment with Netherlands Prime Minister Rob Jetten on the sidelines of the bilateral. We're leaving you with those pictures. Thank you so much for watching.

0: with the same network, Manisha Vaghmare and P.V. Kulkarni. You can see the house that is located behind me. The ground floor was occupied by P.V. Kulkarni and his family. The first floor has 5 rooms. We spoke to the neighbors and we learned that the 5 rooms on the first floor have been rented out to NEET aspirants who come to Latur to prepare for NEET examinations every year. And around 15 NEET aspirants also stayed here. CBI can question them as well, whether they were contacted by P.V. Kulkarni for the paper or for NEET preparations, because he has taken special sessions, special coaching sessions with Manisha Vaghmare for NEET aspirants in Pune in the last week of April. That has come to light. That has been revealed in court. That has been informed by CBI to court as well. With camera person Ashish Dhamapurkar and Aniket Jadhav, this is Divyesh Singh in Latur for India Today. Sachin ji.
1: My colleague Divyesh Singh also spoke with P.V. Kulkarni's ex-student about Kulkarni's past. Listen in to what he said.
0: ये बताइए, आप पीवी कुलकर्णी जी को कब से जानते हैं, कैसे जानते हैं?
2: सर, हमें हम जब पढ़ते थे तब पढ़ाने के लिए सर थे कॉलेज में.
0: और उसके बाद भी आप संपर्क में रहे?
2: यस, उनके बच्चों के काउंसलिंग के बारे में भी सर की मुलाकात 2019 में लास्ट टाइम हुई थी, उसके बाद में मुलाकात नहीं हुई उनकी.
0: आप लोगों को ये पता था कि पीवी कुलकर्णी जी एनटीए के लिए भी काम करते हैं, पेपर सेटिंग के लिए, सब्जेक्ट मैटर?
2: नो, एक्चुअली 2020 में शायद रिटायर हो गए सर कॉलेज से, और उसके पहले तो नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता है कि एनटीए के लिए फिर बाकी कोई पेपर सेटिंग का काम सर करते हैं.
0: स्टूडेंट रहे हैं आप उनके, उनके कॉलेज में पढ़े हैं, तो क्या कॉलेज में भी ऐसा कोई सस्पिशियस कंडक्ट था पीवी कुलकर्णी जी?
2: नहीं सर, नहीं, कभी ऐसे डिटेक्ट यानी नोटिस में तो नहीं आया.
0: इस बार तो सीबीआई का एलिगेशन है कि उन्होंने पेपर लीक कर दिया है.
2: स्ट्रेंज है, हमारे लिए तो स्ट्रेंज है. एक्चुअली जो भी उनका वर्किंग हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कि लातूर में कुछ हुआ होगा. यहाँ पे लातूर में किसी को भी, एक तो वेल नोन भी नहीं है उतने, और ये प्रोसेस यहाँ पे हुआ होगा या फिर यहाँ से कुछ हुआ होगा ऐसे लगता तो नहीं है.
0: सीबीआई ने उन्हें लातूर से ही पकड़ा है.
2: एक्चुअली उनका आना जाना रहता था, लेकिन लातूर में जैसे जब 2020 तक थे ना, वैसे नहीं रहते थे, उनका कंटिन्यूसली बाहर आना जाना चालू रहता था.
1: Let's now get you details and draw the exact characters of this interstate network, the NEET paper leak web, and who exactly are the accused. P.V. Kulkarni, who is the alleged kingpin, and he was the man who leaked the questions and correct answers to the aspirants in Pune. Manisha Mandhare, who was linked to Kulkarni, she leaked biology questions to the students. Manisha Vaghmare, who is connected to Kulkarni and Mandhare, and she was the one who helped circulate the paper and also received the funds. Dhananjay Lokhande, who is linked to Manisha Vaghmare, provided the NEET paper to Shubham. Dr. Omkar Shingote, who is Lokhande's friend, aided him very closely. And Shubham Khernar was the man who bought the NEET paper online for 10 lakh rupees. Yash Yadav was the one who purchased the paper from Shubham and then sold it to Mangilal. Mangilal Bival, who bought the leaked paper for his son and forwarded it to Dinesh. Dinesh Bival bought the leaked paper for his son. And well, after the Madhya Pradesh High Court declared Bhojshala a temple, a massive political storm is raging on. Finally, the order has opened the doors of Bhojshala and devotees gather inside the temple to offer prayers at the Hindu religious site. Madhya Pradesh High Court order is being hailed as a major victory for the Hindu side. The court also directed the government to provide separate land to Muslims for the construction of a mosque. Within hours of the verdict, the Hindu side had moved the Supreme Court, filing a caveat to ensure they are heard before any order is passed if the ruling is challenged. But even as one side celebrates, the Muslim side has come out swinging. AIMIM Chief Asaduddin Owaisi calling the judgment erroneous, alleging key laws and historical records were ignored, and even claiming the centre sided with the petitioners. AIMPLB cleric Khalid Rashid Farangi Mahali also expressed deep disappointment, saying Muslims have offered namaz at the site for centuries, but making it clear the fight is far from over, with the Supreme Court now the next stop. Meanwhile, MP Chief Minister Mohan Yadav has welcomed the order, calling it a moment that honours cultural heritage and asserting that the right to worship will now be ensured. He has also backed the call to bring back the idol of Ma Vagdevi from the UK, saying that the state will make all possible efforts to facilitate its return.
3: मुख्यमंत्री जी, आपने धार्मिक स्थल की बात की तो इसी पर एक जुड़ा हुआ सवाल है। राज्य के खास घटनाक्रम पर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि जो भोजशाला को लेकर फैसला आया है उस पर मैं बात करना चाह रही हूं। आज इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वागदेवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी। ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
4: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहाँ तो राहिर्म और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा। हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना। मुझे भोजशाला में भी अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की, नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी। लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया। मध्यप्रदेश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं। न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले लें जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया।
5: मेरे को लगभग 30 साल हो गए हैं यहाँ पर संघर्ष करते करते। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं लेकिन कई ऐसे बलिदानी हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, कई जेल यात्राएं गई है, कई तो 30-30 बार जेल गए हैं, कई ने लाठियां खाई हैं, कई पे रासुका लगी है। ऐसे सभी हिंदू वीरों को आज उनको प्रणाम करने का मौका है और धार की जनता के शौर्य को शत-शत प्रणाम है।
6: यह न्यायालयीन लड़ाई 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के हरिशंकर जी जैन, विष्णु जी जैन, रजना अग्निहोत्री जी और विनय जोशी जी के साथ चालू हुई थी, जिसके अंदर बाद में एएसआई ने वहाँ का भोजशाला का सर्वेक्षण करा, रिपोर्ट पेश हुई और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये सुनवाई का क्रम जारी रहा और आज इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी पूरी आस्था भारत के संविधान में और न्यायपालिका में है और साथ ही जो है जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज की आशा और अपेक्षा के अनुरूप दिया है।
7: जो इस देश के नियम और कानून है उसके आधार पर काम होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के 3 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए, ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का, ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, उससे मिला हुआ है। इस प्रकार का फैसला भी जो आया है ये तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इस पर किस प्रकार से ये किया जाएगा इस पर अध्ययन किया जाने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री,
8: मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। यार देख लो आज क्या हो रहा है, जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी, अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं, कोई पीआईएल डालता है 226 में और कोर्ट cannot pass an order on declaration of possession or title. आप title दे देते हैं उनको जबकि civil suit चल रहा है उसका.
1: Meanwhile, my colleague Ravish Pal Singh also gets us this report from the Bhojshala complex.

0: फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था। हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बनाया बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे। और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंभे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी, आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं इस खंभे के, ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। हम दूसरे खंभे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको भी यहाँ पर एएसआई की टीम जब यहाँ सर्वे करने आई थी तो इसे कवर किया गया था क्योंकि यहाँ पर भी इस प्रतिमा को पूरी तरीके से घिस दिया गया था। और यहाँ पे अगर आप देखें ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। भोजशाला के भीतर जो 104 खंभे हैं, खंभों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है और काफी ज्यादा कठोर यहाँ निगरानी होती है कई सीसीटीवी कैमरों से, ये पूरा परिसर हम आपको दिखा रहे हैं 104 खंभों पे टिका हुआ जिसे खुद अब एएसआई ने स्वीकृति दी, उसके बाद हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। लेकिन अगर अभी आप देखें तो अभी भी यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त आपको दिख जाएंगे इस पूरे स्थान पर।
1: From diplomacy to a relaxed stroll, Prime Minister Modi shared a candid moment with Netherlands Prime Minister Rob Jetten on the sidelines of the bilateral. We're leaving you with those pictures. Thank you so much for watching.

0: अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपने रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे जिसको माना गया था, हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे। और हम आपको लेके चलते हैं गौशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंभे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी, आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं इस खंभे के, ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। हम दूसरे खंभे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको भी यहाँ पर एएसआई की टीम जब यहाँ सर्वे करने आई थी तो इसे कवर किया गया था क्योंकि यहाँ पर भी इस प्रतिमा को पूरी तरीके से घिस दिया गया था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। गौशाला के भीतर जो 104 खंभे हैं, खंभों पे आकृतियां हैं, उन सबके बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड है और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है और काफी ज्यादा कठोर यहाँ निगरानी होती है कई सीसीटीवी कैमरों से, ये पूरा परिसर हम आपको दिखा रहे हैं 104 खंभों पे टिका हुआ जिसे खुद अब एएसआई ने स्वीकृति दी, उसके बाद हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। लेकिन अगर अभी आप देखें तो अभी भी यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त आपको दिख जाएंगे इस पूरे स्थान पर।
1: From diplomacy to a relaxed stroll, Prime Minister Modi shared a candid moment with Netherlands Prime Minister Rob Jetten on the sidelines of the bilateral. We're leaving you with those pictures. Thank you so much for watching.

0: or for NEET preparations, because he has taken special sessions, special coaching sessions with Manisha Wagmare for NEET aspirants in Pune in the last week of April. That has come to light. That has been revealed in court. That has been informed by CBI to court as well. With camera person Ashish Dhamapurkar and Aniket Jadhav, this is Divyesh Singh in Latur for India Today. Sachin Ji.
1: My colleague Divyesh Singh also spoke with P.V. Kulkarni's ex-student about Kulkarni's past. Listen in to what he said.
0: ये बताइए, आप पीवी कुलकर्णी जी को कब से जानते हैं, कैसे जानते हैं?
2: सर, हमें हम जब पढ़ते थे तब पढ़ाने के लिए सर थे कॉलेज में.
0: और उसके बाद भी आप संपर्क में रहे?
2: यस, उनके बच्चों के काउंसलिंग के बारे में भी सर की मुलाकात 2019 में लास्ट टाइम हुई थी, उसके बाद में मुलाकात नहीं हुई होंगी.
0: आप लोगों को ये पता था कि पीवी कुलकर्णी जी एनटीए के लिए भी काम करते हैं, पेपर सेटिंग के लिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट?
2: नो, एक्चुअली 2020 में शायद रिटायर हो गए सर कॉलेज से, और उसके पहले तो नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता है कि एनटीए के लिए फिर बाकी कोई पेपर सेटिंग का काम सर करते हैं.
0: स्टूडेंट रहे हैं आप उनके, उनके कॉलेज में पढ़े हैं, तो क्या कॉलेज में भी ऐसा कोई सस्पिशियस कंडक्ट था पीवी कुलकर्णी जी?
2: नहीं सर, नहीं, कभी ऐसे डिटेक्ट यानी नोटिस में तो नहीं आया.
0: इस बार तो सीबीआई का एलिगेशन है कि उन्होंने पेपर लीक कर दिया है.
2: स्ट्रेंज है, हमारे लिए तो स्ट्रेंज है. एक्चुअली जो भी उनका वर्किंग हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कि लातूर में कुछ हुआ होगा. यहाँ पे लातूर में किसी को भी, एक तो वेल नोन भी नहीं है उतने, और ये प्रोसेस यहाँ पे हुआ होगा या फिर यहाँ से कुछ हुआ होगा ऐसे लगता तो नहीं है.
0: सीबीआई ने उन्हें लातूर से ही पकड़ा है.
2: एक्चुअली उनका आना जाना रहता था, लेकिन लातूर में जैसे जब 2020 तक थे ना, वैसे नहीं रहते थे, उनका कंटिन्यूअसली बाहर आना जाना चालू रहता था.
1: Let's now get you details and draw the exact characters of this interstate network, the NEET paper leak web, and who exactly are the accused. P.V. Kulkarni, who is the alleged kingpin, and he was the man who leaked the questions and correct answers to the aspirants in Pune. Manisha Mandhare, who was linked to Kulkarni, she leaked biology questions to the students. Manisha Wagmare, who is connected to Kulkarni and Mandhare, and she was the one who helped circulate the paper and also received the funds. Dhananjay Lokhande, who is linked to Manisha Wagmare, provided the NEET paper to Shubham. Dr. Omkar Shingote, who is Lokhande's friend, aided him very closely. And Shubham Khernar was the man who bought the NEET paper online for 10 lakh rupees. Yash Yadav was the one who purchased the paper from Shubham and then sold it to Mangilal. Mangilal Bival, who bought the leaked paper for his son and forwarded it to Dinesh. Dinesh Bival bought the leaked paper for his son. And well, after the Madhya Pradesh High Court declared Bhojshala a temple, a massive political storm is raging on. Finally, the order has opened the doors of Bhojshala and devotees gather inside the temple to offer prayers at the Hindu religious site. Madhya Pradesh High Court order is being hailed as a major victory for the Hindu side. The court also directed the government to provide separate land to Muslims for the construction of a mosque. Within hours of the verdict, the Hindu side had moved the Supreme Court, filing a caveat to ensure they are heard before any order is passed if the ruling is challenged. But even as one side celebrates, the Muslim side has come out swinging. AIMIM Chief Asaduddin Owaisi calling the judgment erroneous, alleging key laws and historical records were ignored, and even claiming the centre sided with the petitioners. AIMPLB cleric Khalid Rashid Farangi Mahali also expressed deep disappointment, saying Muslims have offered namaz at the site for centuries, but making it clear the fight is far from over, with the Supreme Court now the next stop. Meanwhile, MP Chief Minister Mohan Yadav has welcomed the order, calling it a moment that honours cultural heritage and asserting that the right to worship will now be ensured. He has also backed the call to bring back the idol of Ma Vagdevi from the UK, saying that the state will make all possible efforts to facilitate its return.
3: मुख्यमंत्री जी, आपने धार्मिक स्थल की बात की, तो इसी पर एक जुड़ा हुआ सवाल है. राज्य के खास घटनाक्रम पर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि जो भोजशाला को लेकर फैसला आया है उस पर मैं बात करना चाह रही हूं। आज इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी। ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
4: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहां तो राहिर में और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा। हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना। मुझे भोजशाला में भी मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की, नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी। लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया। मध्यप्रदेश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं। न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले लें जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया।
5: मेरे को लगभग 30 साल हो गए हैं यहां पर संघर्ष करते करते। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं लेकिन कई ऐसे बलिदानी हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, कई जेल यात्राएं गई है, कई तो 30-30 बार जेल गए हैं, कई ने लाठियां खाई हैं, कई पे रासुका लगी है। ऐसे सभी हिंदू वीरों को आज उनको प्रणाम करने का मौका है और धार की जनता के शौर्य को सशत प्रणाम है।
6: यह न्यायालयीन लड़ाई 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के हरिशंकर जी जैन, विष्णु जी जैन, रजना अग्निहोत्री जी और विनय जोशी जी के साथ चालू हुई थी, जिसके अंदर बाद में एएसआई ने वहाँ का भोजशाला का सर्वेक्षण करा, रिपोर्ट पेश हुई और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये सुनवाई का क्रम जारी रहा और आज इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी पूरी आस्था भारत के संविधान में और न्यायपालिका में है और साथ ही जो है जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज की आशा और अपेक्षा के अनुरूप दिया है।
7: जो इस देश के नियम और कानून है उसके आधार पर काम होना चाहिए क्योंकि इसी प्रकार के 3 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए, ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का, ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, उससे मिला हुआ है। इस प्रकार का फैसला भी जो आया है ये तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इस पर किस प्रकार से ये किया जाएगा इस पर अध्ययन किया जाने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री,
8: मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। यार देख लो आज क्या हो रहा है, जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी, अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं, कोई पीआईएल डालता है 226 में और कोर्ट कैनॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका।
1: Meanwhile, my colleague Ravish Pal Singh also gets us this report from the Bhojshala complex.

0: फैसले के अगले ही दिन क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किन चिन्हों को एसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था। तो उसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये गणेश जी हैं इस दरवाजे पे, जिसको माना गया था हाईकोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो फैसला सुनाया है उसमें एसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे गणेश जी बताया है। ये एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया था, और साथ ही में ये रिद्धि और सिद्धि जो दो प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन इनको अगर आप देखें तो सबके जो चेहरे हैं वो घिस दिए गए हैं, जो आकृतियां थी उन्हें घिस दिया गया है। यहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आकृतियों को घिसा गया है, जिसके बाद इस पे विवाद खड़ा हुआ था। ये रिद्धि और सिद्धि की आकृतियां हैं जिन्हें यहाँ घिसा गया है, और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये गणेश जी हैं जो इस दरवाजे के ऊपर बने हुए थे। और हम आपको लेके चलते हैं भोजशाला के उस हिस्से में जहाँ पे बाकायदा शिलालेख जो है वो लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं आप चाहूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वो हिस्सा जहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो और भी अगर आप देखें तो ये जो लिपि यहाँ पे लिखी हुई है इसे भी यहाँ पे पढ़ा गया है, और इस प्राकृत लिपि में ही जो भाषा लिखी हुई है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये सनातन काल से यहाँ पे मौजूद है। जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पाई थी वो थी ये घंटियां। ये जो आप देख रहे हैं ये वो घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। ज्यादातर ये घंटियां हर खंभे पे यहाँ पे बनी हुई थी, उकेरी गई थी, आप देख सकते हैं, और इसे भी आधार माना है। लेकिन देखिए इस तरफ भी हम आपको दिखाते हैं, इस खंभे के ये भी जो है ये घंटियां हैं जिसे यहाँ पे उकेरा गया है। हम दूसरे खंभे पे जाते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको घंटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको वो घंटियां नहीं दिखेंगी क्योंकि उसे हटा दिया गया, घिस दिया गया, और उसके निशान यहाँ दिखते हैं साफ तौर पे कि उसे कैसे घिसा गया था। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको भी यहाँ पर एएसआई की टीम जब यहाँ सर्वे करने आई थी तो इसे कवर किया गया था क्योंकि यहाँ पर भी इस प्रतिमा को पूरी तरीके से घिस दिया गया था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो काल सर्प यंत्र है जो फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है, और इसमें अगर आप देखें तो उसे फिलहाल कवर करके रख दिया गया है। और ये जो कवर करके रखा गया है वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पे कोशिश की गई थी घिसने की, लेकिन पूरी तरीके से घिस नहीं पाया। बताया गया कि चूल्हे से ढक दिया गया था लेकिन बाद में उसे निकाला गया है। भोजशाला के भीतर जो 104 खंभे हैं, खंभों पे आकृतियां हैं, उन सब के बीचों बीच इस जगह की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है वो हवन कुंड, वो यज्ञशाला, जहाँ पे माना जाता है कि प्राचीन समय में माँ सरस्वती के उपासक के रूप में लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। उस यज्ञ वेदी पे भी हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यहीं पे अगर आप देखें जो इसी साल सरस्वती पूजन भी हुआ था तो इसी जगह पे वो यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ कुंड है, बीचों बीच अगर आप देखें तो यहीं पे हवन की वेदी जलाई जाती है, और यहीं पे एक तरफ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती का फोटो जो है उसे रखा जाता है, और माँ वाग्देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप की जो फोटो है उसे भी यहाँ रखा जाता है, और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ होता है। ये पूरा हवन कुंड, और इन तस्वीरों को देख के आपको स्वतः ही अंदाजा लग जाएगा कि जिस तरीके का एक हवन कुंड का इलाका होता है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ये पूरा वैसा ही बना हुआ है। एक तरफ से लोग आते हैं, नीचे उतरते हैं, यज्ञ करते हैं, और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर चले जाते हैं। और ये पूरा परिसर है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये पूरा परिसर है किस तरीके का। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन परिसर, और ये पूरा परिसर जो इस वक्त सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है और काफी ज्यादा कठोर यहाँ निगरानी होती है कई सीसीटीवी कैमरों से, ये पूरा परिसर हम आपको दिखा रहे हैं 104 खंभों पे टिका हुआ, जिसे खुद अब एएसआई ने स्वीकृति दी, उसके बाद हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। लेकिन अगर अभी आप देखें तो अभी भी यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त आपको दिख जाएंगे इस पूरे स्थान पर।
1: From diplomacy to a relaxed stroll, Prime Minister Modi shared a candid moment with Netherlands Prime Minister Rob Jetten on the sidelines of the bilateral. We're leaving you with those pictures. Thank you so much for watching.

आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। बात वही है, एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है और हमारे एफर्ट्स की स्केल भी उतनी ही बड़ी है। रिकॉर्ड हाईवे कंस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें और दुनिया का इतना बड़ा रिन्यूएबल एक्सपांशन, बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, आज का भारत कहता है हम ये लक्ष्य पाकर के ही रहेंगे।